मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार

बार है शख्स मुत 1948 की ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026, 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह स्वर में सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये मातृवंदना।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री के वर्मा का है।
1: पदोन्नति की सूची निकल गई थी, पर उसमें उसका नाम नहीं था। स्वाभाविक था कि वो उदास हो। ऐसे में सहानुभूति जताने वालों की कमी नहीं रहती। चेस्टरफील्ड का कहना है कि अधिकतर लोग अपने घनिष्ठतम मित्रों से अपनी तुलना करके उनके छोटेपन से आनंदित होते हैं। ऐसी स्थिति में सतही मित्र भी ऊपर से यूं व्यवहार करते हैं जैसे आपसे अधिक दुख उन्हें हुआ हो। वे कहेंगे, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, आजकल भलमन साहत का तो जमाना ही नहीं रहा, चापलूसों की ही बनाई है आदि आदि। अधिकतर लोगों को अपने आप से सहानुभूति जताया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर उनसे बचा भी तो नहीं जा सकता है। उसे भी बहुतों ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाली गीता की उक्ति सुनाकर सांत्वना देने का प्रयास किया। उसे सबसे बुरा तो तब लगा जब उसके एक सहयोगी ने, जो दूसरे विभाग में कार्य करता था और जो पदोन्नति पाने में सफल हो गया था, उसने भी यही बात कही। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो, जैसे उसके जले पर नमक छिड़क दिया गया हो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आइवरी टावर पर बैठकर दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, पर जिस पर गुजरती है वही जानता है दर्द क्या चीज है। फल की चाह न करते हुए कर्म करते रहने का उपदेश बहुत सरल है। ऐसी मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति को कभी दौड़ के मैदान में उतार कर देखिए। दौड़ में प्रथम आने की कामना न हो तो वो मैदान से 10 चक्कर भले ही पूरा कर ले, पर पहले स्थान पर तो कदापि नहीं आ सकता। हमारा जीवन स्पर्धाओं से भरा पड़ा है। हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे निश्चित समय से पूर्व सीमित साधनों से पूरी दक्षता के साथ करें, तभी हम लोगों की नजरों में आ सकते हैं। हर कदम पर सामान्य से कुछ अधिक करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है, नोटिस किया जाता है। उससे जितनी बात की अपेक्षा हो केवल उतना ही कार्य करने वाला व्यक्ति सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी में गिना जाएगा, और उससे कम काम करने वाला व्यक्ति तृतीय श्रेणी में आता है। पहली श्रेणी में आने वाला व्यक्ति ही हाई फ्लायर होता है। दौड़ में प्रथम आने के लिए यह भावना आवश्यक है। नौकरी में रुचि बनाए रखने के लिए यदि समय पर पदोन्नति मिलती रहे तभी ठीक है, पर केवल पदोन्नति पाना ही प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं है। जीवन में अक्सर देखा जाता है कि नौकरी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, टालने वाली प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरे वे कर्तव्य परायण लोग होते हैं जो यदि पदोन्नति की दौड़ में चूक भी जाएं तो 2-4 दिनों की मायूसी के बाद फिर से पूर्ववत कार्य में जुट जाते हैं, और जिन्हें काम नहीं करना है वे पदोन्नति पाने के बाद थोड़े समय के लिए भले ही सक्रिय हो जाएं पर आदतन शीघ्र ही अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। अपना कर्म करते रहिए, मतलब ये कि अगर हर क्षण हम अपनी जीत पुरस्कार अथवा पदोन्नति के बारे में ही सोचते रहेंगे तो शायद अपने कर्म पर संपूर्ण ध्यान नहीं लगा पाएंगे। उचित हो कि हम अपना कर्म पूरी एकाग्रता से पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें, अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी।
0: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री के वर्मा का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। इसके संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। मुख्य गायक स्वर अनूप चलूटा का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा पशुधन, इसमें पशु स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार सिन्हा।
1: मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिन्हा, विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी कुरुद, जिला धमतरी। किसान भाइयों, बरसात लगने वाला है। बरसात में हमार पशु ला कैसे प्रबंधन करना है, पोषण करना है, देखरेख करना है, हमार कोठा प्रबंधन कैसे होना चाहिए, हमार पशु रखरखाव कैसे होना चाहिए, कैसन पानी पिलाना है, कैसन दाना खवाना है, एकर बारे में बहुत ध्यान देने लगी। काबर बरसात एक ऐसे समय है जब पशु ला बहुत सारी बीमारी होते, परजीवी बीमारी बहुत ज़्यादा होते। वही हरा घास खवाथन, बिना धोए खवाथन, तो हरा घास के माध्यम से ओला कृमि की समस्या आते, वही में हमार पशु दस्त करते। एक ऐसी समस्या है, हमन इकट्ठा करके रखे हैं गर्मी दिन में पैरल कट्टी कटवा के, उसमें अगर नमी आ गए, पानी पड़ गए, तब फफूंद लग गए थे। अभी फफूंद है खवाथन पशु बिना देखे, तब उसमें कीड़ा किल्ली भी घुस गए है, तो वो कहीं कहीं हमारे पशु के स्वास्थ्य खराब करते और उत्पादन घट जाते, पशु खाना छोड़ देते और दूध तक उतर जाते होकर। तो हमन ला एला विशेष ध्यान लगी, काबर की हमन जो पर रखे हैं, हमार गौ माता रखे हैं या हमार कर भैंस है, हम अगर ओला दूध के हिसाब से रखा था तो हमला वैसन पशु पोषण देने लगी, वैसने दाना देने लगी। तो आप मन जहाँ भी अपन पशु के लिए दाना

0: चारक व्यवस्था रखे हो, प्रबंधन करत हो, वो साफ सुथरा रहे, कीड़ा मकोड़ा मत आए, पानी की निकासी बराबर रहे। ऐसने हमारे पशु जिहाँ रखे हैं वहाँ पशु है दाना है खाते, कोटना है कोटना बराबर साफ करो, अगर कोटना में देवत हो अपन पानी तक हमारे पशु पेशाब करते गोबर करते तो बराबर उल साफ करो, पेशाब की जमावट मत रहे उस जगह में। साथ ही साथ जो जमीन है ते हा खुरदुरा रहा है, चिक्कन रही, पशु पेशाब कर दिस, पशु गोबर कर दिस तो में फिसले डर रहे, आपो फिसल जाहू कि हमार पशु तको फिसल जाहू में, और वह फिर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर के या आर्थोपेडिक समस्या पशु में आते तो हम ध्यान देने लगी। साथ ही साथ ये पशु जो हमार कोठम है भाई और ओकर पेशाब मारे है, पानी निकासी नहीं हो पात बराबर तो मच्छर तको पनपी, किन्नी पेशव तको पनपी, और वो धीरे धीरे पशु के खून जो से काम करते और पशु कमजोरी आ जाते हो में, तो हमला बरसात ने बिल्कुल चीज ध्यान देने लगी। साथ ही साथ हमला अगर पशुला स्वच्छ पानी पिया थन, साफ पानी पिया थन, काबर हमन तरियक पानी पिया थन, गंदा पानी पिया थन तो कहीं कीड़ा मकोड़ा के अंडा वंडा में सब ऊपर पानी मिक्स हो जाते, गंदर थे पानी है तो पशुला डायरिया की समस्या थे, फूड पॉइजनिंग की समस्या थे, तो हमला यह चीज ध्यान देने लगी। और बराबर अभी बरसात की पहली विभाग के द्वारा टीकाकरण हुई, आप टीकाकरण कराओ, पशु मन स्वस्थ रखो, और कोई भी समस्या आती चाहे कृमिनाशक खवाना है या टीकाकरण करवाना है तो हम नज़दीक में पशु चिकित्सालय है, अपन संपर्क करो, हमारे पशु चिकित्सक भाई मन अपन के सहयोग करी और जैसे भी समस्या आते आपके निदान करी। यही प्रकार से टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। हमारा भी विभाग के द्वारा FMD के, एक टंगिया के और गलघोटू के तीनों प्रकार के टीकाकरण हो ही, और आप मन के घर में जाकर ही, घर में जाकर इसे कहा हो ही कि कोनो पशु छूटे नहीं गांव के, और गांव में एक दिन पहले मुनादी भी कराया जाही टीकाकरण कराथन की के, तो आप मन हमारे विभाग के आदमी तक सहयोग करो। और आप मन से एक निवेदन भी ये भी है कि पशु ला स्वस्थ रखू तभी आप मन स्वस्थ रहो, बीमार पशु रही तो अपन बीमार पड़ो, तो आप मन अपन घर के सदस्य तौर पर वो पशु के देख रेख करो, और खान पान के दाना चारा के व्यवस्था सही ढंग से करो, खास करके नमी नहीं आना चाहिए जो भी दाना देते होते में, स्पेशली जो हमार पैरा कट्टी काट के रखन भंडारण में रखन बरसात में कि हाँ भाई पशु खवाबो की के, ओकर रख रखाव सही होना चाहिए ताकि पशु ला कोई फूड पॉइजनिंग मत हो, डायरिया दस्त की शिकायत मत हो, और यही है कहीं कहीं हमार पशु ला बहुत प्रकार के बीमारी तक फैलाते, परजीवी मन हाँ जाते तेकर से हमार भौरी में ऐसी बीमारी होते हमारे पशु ला परजीवी से, तो मतलब परजीवी बचाव भी करना है तो हमारे विभाग के द्वारा साइफरमेथ्रिन नाम के एक तो दवाई भी आते वाला आप कोठम छिड़काव भी कर सकते हो, ओमें अगर कोई प्रकार के कीटाणु जीवाणु हो तो खत्म तक हो जाते। तो पशुपालन पालक भाई मतलब मैं यही संदेश दूँ कि आप मन अपन पशु के सेवा करो, और बरसात के पहली ये सब तैयारी लो, पहली कर लो तो ज़्यादा अच्छा रही कि हमार पशु की कोठा और ओकर जो चारा है तेकर प्रबंधन सही समय में हो सके। और यही संदेश के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ, धन्यवाद।
1: हमारा पशुधन, इसमें पशु स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिन्हा। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का प्रसारण होगा 8:30 पर, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा रामचंद्र भागवत का वायलिन पर बजाया राग बसंत मुखारी, और इसी कार्यक्रम में 10:30 पर आप सुन सकेंगे सुलोचना बृहस्पति का राग कौनसी कान्हड़ा में गायन। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर का समय होगा 9:25। हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर सुनेगा 7:05 पर। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र का समय होगा 8:30। सुबह 9:00 सुनेगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के होंगे।

0: श्रोताओं की ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो सुनिएगा सुबह 11:05 पर। छत्तीसगढ़ में पुरातत्व ये रूपक का प्रसारण होगा दोपहर 1:30 पर। लेखक डॉक्टर प्रेम नारायण दुबे और प्रस्तुति श्री इलाशंकर गुहा की होगी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर हिंदी में। आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस। साथ ही पत्र मिला और युगल गीत कार्यक्रम भी आप सुन सकेंगे। किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में पहले सुनिएगा पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस और फिर चर्चा होगी धान की नर्सरी और रोपाई प्रबंधन। आज की सलाह में PPR बीमारी यानी भेड़ बकरी में होने वाला प्लेग रोग कारण लक्षण बचाव की जानकारी देंगे जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला के अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर संजीव राय। सुबह 9:40 और रात 8:15 पर सुगम संगीत कला का में आप सुनिएगा PT उल्लास कुमार को। दोपहर 12:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। शाम 6:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनिएगा नमन दत्त और साथियों को। चित्रपट संगीत का समय होगा सुबह 9:15 सुबह 10:30 दोपहर 1:05 दोपहर 2:00 2:30 शाम 7:00 रात 8:00 रात 9:15 पर रात 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा दोपहर 12:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुड़ सुनेगा शाम 5:00। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार रिले करते हैं फिर इसके बाद हिंदी में समाचार आप सुनेंगे।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमंत्री अभवत्। श्रीमोदी 14,2000 मई मासस्य 26 दिनांके कार्यभारं स्वीकृतवान् आसीत्। असौ पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य समयं अतिक्रमितवान् यः प्रथमवारं 2599 मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान् तथा 64,99 मई मासस्य 27 दिनांकं यावत् स्वीय सेवां प्रदत्तवान्। निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण पंडित नेहरू वर्यस्य कार्यकालः 98,300,4,000 यावत् आसीत्। 14,2000 मई मासस्य 26 दिनांकादारभ्य अद्य 26,2000 जून मासस्य 10 दिनांकं यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कार्यकालः निरन्तरं 99,300,4,000 दिनानि यावत् जातः येन श्रीमोदी भारतस्य इतिहासे सर्वाधिकावधि पर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभवत्। एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसा नायका एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदी वर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां प्रमाणमस्ति अपितु विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य जनानां तस्य नेतृत्वे पुनः पुनः स्थापितस्य विश्वस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा

0: कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण। नमस्कार रायपुर।

एक सुहानी सुबह में एक बार फिर आपका दोस्त हाजिर है कार्यक्रम नमस्कार रायपुर लेकर। स्वीकारे संजय पाठक का नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन।

अभी सुबह की बेला है, आसमान में बादलों की उपस्थिति इसे और भी सुहाना बना रहा है। ठंडी हवाओं के झोंकों में झूमते पेड़ पौधे इसे और भी मनोरम बना देते हैं। ऐसे में संभव है हमारे कई श्रोता सुबह की सैर को निकले हों, और ये भी संभव है कि कुछ लोग

योग आसन या फिर व्यायाम कर रहे हों। आखिरकार अच्छी सेहत के लिए व्यायाम और नियमित जीवन शैली को अच्छा बताया गया है। वैसे भी सुहानी सुबह बीती हुई रात की कहानी बताती है, इसमें कलियों का बचपन, फूलों की जवानी होती है। ऐसे मनोरम दृश्य देखकर मन खुद ही खुद गाने लगता है कुछ इस तरह।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओ, समय की अपनी गति है, अपनी चाल है। ये ना तो किसी के आने की आहट से जल्दी चलता है और न ही किसी के जाने का शोक मनाते हुए अपनी गति धीमी करता है या फिर रुक जाता है। समय की इस अबाध गति में कई यादगार पल बन जाते हैं, हमें कुछ नया करने की सीख देख कर जाते हैं। इसी तरह आज यानी 10 जून की भी एक विशेषता है। श्रोताओं, आज है विश्व भूगर्भ जल दिवस। ये दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। ये दिन तेजी से घटते भूमिगत जल स्तर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भूजल संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य अंधाधुंध जल के दोहन को रोकना और बारिश के पानी के संरक्षण करने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इन दिनों हम देखते हैं कि लगातार बढ़ते नलकूपों और बोरवेल के कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इससे भविष्य के लिए एक भीषण जल संकट पैदा हो सकता है और हो भी रहा है। इससे बचने के लिए हमें कुछ आसान और सरल उपाय करने होंगे। इसके लिए हम चाहें तो बारिश के पानी को बचा सकते हैं। इसके लिए हम छतों के पानी को भूमिगत टैंक में एकत्रित करके उसे जमीन में रिसने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक पौधे लगाने से मिट्टी के जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है, तो ऐसे में हम पौधरोपण भी कर सकते हैं। इससे भूजल स्तर ऊपर उठता है, साथ ही हमें पानी के अपव्यय को भी रोकना होगा। जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करके हम इस दिशा में एक सार्थक कदम उठा सकते हैं। वैसे भी अभी बारिश का इंतजार है, आसमान की ओर हमारी टकटकी लगी हुई है, दिन का तापमान अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में ईश्वर से, अल्लाह से कुछ इस तरह गुहार लगाई जा रही है।

श्रोताओं, आज का दिन हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है और वो है नेत्रदान करने का। हर साल विश्व के विभिन्न देशों में नेत्रदान की महत्ता को समझाने के लिए 10 जून को नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इसके जरिए लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आँखें दान करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना है, ताकि दूसरों की अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत की बात करें तो यहाँ नेत्रदान और कार्निया प्रत्यारोपण की संख्या कम है अन्य देशों की तुलना में। नेत्रदान करने वालों की संख्या भी कम है। इस कारण देश में 25,000 से ज़्यादा लोग आज भी अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। देश में प्रत्येक वर्ष 80 से 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन नेत्रदान 25,000 के आसपास ही होता है। ये दिवस विशेष मनाने के पीछे कारण है कि हम अपनी आँखें दान कर अंधेरे में जी रहे लोगों की जीवन में उजाला भर सकें।

अब श्रोताओं, एक जानकारी उनके लिए जो बतौर दैनिक यात्री या फिर किसी काम से रायपुर या फिर डोंगरगढ़ की ओर यात्रा करने की तैयारी में हो। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन में कमिश्निंग का काम किया जा रहा है और इसके लिए विशेष नॉन इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा और इसकी वजह से आज से यानी आज 10 जून से 12 जून तक कुछ ट्रेनें यानी 8 मेमू और डेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 पैसेंजर ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जाएगा। तो 10 जून को प्री नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक लिया गया और फिर कल 11 जून को सुबह 11:30 से लेकर 12 जून को रात 2:30 तक यानी लगभग 15 घंटे का मुख्य नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा और इसके कारण रायपुर से डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ से रायपुर, डोंगरगढ़ से गोंदिया, गोंदिया से डोंगरगढ़, गोंदिया से इतवारी, इतवारी से गोंदिया और इतवारी से बालाघाट और बालाघाट से इतवारी जाने वाली मेमू और डेमू ट्रेनें निर्धारित तिथियों पर रद्द रहेंगी, मतलब 11 और 12 तारीख को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 6875705 रायपुर डोंगरगढ़ पैसेंजर 10 और 11 जून को दुर्ग स्टेशन पर ही समाप्त होगी, यानी यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, रायपुर से सिर्फ दुर्ग तक ही चलेगी और दुर्ग से जो डोंगरगढ़ के बीच नहीं चलेगी। और इसी तरह एक और ट्रेन है डोंगरगढ़ से जो बिलासपुर जाती है, वह दुर्ग स्टेशन से ही संचालित होगी और डोंगरगढ़ दुर्गखंड में यह निरस्त रहेगी। इस तरह रेलवे ने यात्रियों की से यात्रा करने से पहले ट्रेनों के परिचालन की स्थिति की जानकारी लेने का भी आग्रह किया है।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की वाणी, यही तो है दूरदर्शन और आकाशवाणी। वैसे भी हमारा नमस्कार रायपुर एक कार्यक्रम सूचनाओं पर केंद्रित रहता है, इसीलिए तो कहते हैं ना सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। तो पहले आपको बताते हैं यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की विषयवार समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में होंगी। देश भर के 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD प्रवेश के लिए ये परीक्षा देंगे। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। परीक्षा वाले शहरों की जानकारी परीक्षा से 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी। यानी 22 जून को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 12 जून से 14 जून के बीच अपनी परीक्षा वाले शहर की जानकारी मिल सकती है। इसके बाद प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, विषय कोड, तिथि और पाली की जानकारी ध्यान से जाँच लें। और मेहनत जब आप करते हैं तो उसका फल मिलता है, तभी तो आप कुछ कहते हैं ना कि जीन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी CGBSE ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की द्वितीय मुख्य और अवसर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने की तिथि में आंशिक वृद्धि की है। जो छात्र किसी कारणवश अब तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए आवेदन भरने का आज आखिरी मौका है। मंडल ने संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है। नई तिथि के अनुसार 10 जून यानी आज शाम तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में फॉर्म भरने के लिए छात्रों को 1540 रुपये विशेष विलंब शुल्क देना होगा। इससे पहले सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की तिथि 4 से 30 मई तक निर्धारित की गई थी। तो जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इस मिले मौके का लाभ उठाते हुए आवेदन कर सकते हैं और इस तरह वो अपनी जो समय बचा हुआ है उसका लाभ उठा सकते हैं और आवेदन करके अपनी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के लिए एक सूचना है और वो उनके लिए काउंसलिंग के लिए है कि छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सत्र 2026 के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कस्टम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग मटेरियल डिजाइन, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और लेटरल एंट्री जैसे पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 3 चरणों में होगी। इसमें 2 चरण ऑनलाइन और अंतिम चरण संस्था स्तर पर यानी कॉलेज के लेवल पर होंगे। इसके अनुसार पहले चरण के लिए 11 से 15 जून के बीच पंजीयन किया जाएगा और इसकी प्रावीण्य सूची 16 जून को जारी होगी। छात्र 17 जून तक दावा और आपत्ति कर सकेंगे। 19 जून को सीटों का आवंटन होगा और 20 से 24 जून तक छात्र प्रवेश ले सकेंगे। पहले चरण के बाद खाली रहने वाली सीटों के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत 26 से 30 जून तक पंजीयन किया जाएगा और 1 जुलाई को इसकी प्रावीण्य

सूची जारी होगी। 3 जुलाई को सीटों का आवंटन करेंगे और इसके बाद छात्र चिन्हित संस्थानों में जाकर प्रवेश ले सकेंगे। और इन दोनों चरणों के बाद भी यदि सीटें खाली रहती हैं तो 11 से 16 जुलाई तक संस्था स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी और इसके लिए पंजीयन होगा। 17 जुलाई को इसकी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी और इसमें शामिल होने वाले छात्रों को 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से संबंधित संस्था में उपस्थित होना होगा और खाली सीटों पर आवंटन की कार्रवाई 18 से 21 जुलाई तक होगी। तो इस तरह विद्यार्थी जो डिप्लोमा कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए प्रवेश की ये समय सारणी जारी की गई है और इन तिथियों में उपस्थित होकर वे प्रवेश ले सकते हैं। तेज हुई डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात, आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: आयुष मंत्रालय ने, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद ने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आवेदन मंगाए हैं। रिसर्च का विषय आयुर्वेद में रिसर्च और नए उत्पादों का विकास रखा गया है। उम्मीदवार पिछले 3 साल के अंदर आयुर्वेद में PhD या PG या फिर संबंधित विषय में PhD पूरी की हो, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही इसके रिसर्च पेपर ACI जनरल्स में प्रकाशित होने चाहिए। आवेदन के लिए अधिकतम आयु 40 साल है और इसके तहत 10 शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने ₹60,000 फेलोशिप और HRA दिया जाएगा। रिसर्च से जुड़े खर्चों के लिए ₹3,00,000 सालाना भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार 30 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए 30 जून तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और मिले मौके का लाभ उठा सकते हैं। ये तो ही पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की बात, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से

0: अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी

0: ले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,00,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
4: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और सौम्या का नमस्कार।
0: सौम्या जी, देखिए गर्मी का मौसम अब लगता है कि बहुत जल्द हमसे दूर हो जाएगा। आसमान में छाते हुए काले बादल अब वर्षा ऋतु को आमंत्रित कर रहे हैं, तो वर्षा ऋतु अब बिल्कुल नजदीक है। और इस कार्यक्रम में तो भाई हर हफ्ते पत्रों की वर्षा होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना
1: जी।
0: और ये पत्रों की वर्षा जो है वो हम सभी प्रस्तुतकर्ताओं के तन मन को भिगो देती है, क्योंकि इसमें हमारे सभी सुधी श्रोताओं के प्यार की बारिश होती है। तो बताइए, ये पहला पोस्टकार्ड आपके हाथ में किसका है?
1: ये पहला पोस्टकार्ड है नवागढ़ कटई से शारदा और सीमा वर्मा का। लिखते हैं, 10 मई को देश की वाणी आकाशवाणी में आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री विश्वास केलकर से दीपक हटवार की बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आज से ठीक एक वर्ष पूर्व इस श्रृंखला की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है देश की वाणी आकाशवाणी। और इसमें आकाशवाणी से जुड़े अनेक कार्यक्रम प्रसारकों से हमने बातचीत की और हमारे श्रोताओं को ये पूरी श्रृंखला बहुत अच्छी लगी। तो इसके समापन की कड़ी को भी हमारे श्रोताओं ने सुना, तो इस पत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: कसडोल से समयलाल साहू, कौशल्या देवी साहू लिखते हैं, 18 मई को दोपहर में चित्रपट संगीत में बहुत ही मार्मिक की सुनवाने के लिए धन्यवाद।
0: भाई देखिए, चित्रपट संगीत में तो अलग अलग मूड के गीत होते हैं सौम्या
1: जी,
0: और हमारे प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक नए पुराने सभी तरह के गीतों को इसमें शामिल करते हैं। और बहुत से गीत मौसम के मुताबिक होते हैं, जीवन के अलग भावों के मुताबिक होते हैं, तो इन सभी गीतों से हमारे श्रोताओं के जज्बात भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप गौर से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खैरागढ़ से देवेंद्र महोबे लिखते हैं, 19 मई को श्री रविंद्र गिन्नौरे का चिंतन श्री दीपक हटवार के वाचन स्वर से सुना, जो बड़ा दिलचस्प लगा। चिंतन का विषय ध्यान था। सच तो ये है कि यदि ध्यान का प्रमुख संदेश योग है, तो दूसरी ओर जीवन को बचाने के लिए गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करना निषेध है। अगर हमें जीना है

0: तो ड्राइविंग की ओर पूर्ण चेतना के साथ ध्यान रखें। बच्चों को यदि प्रथम श्रेणी या मेरिट में आना है तो ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें।
1: देखिए सौम्या जी, इन्होंने ध्यान का वर्णन कितने अच्छे विषयों के साथ किया है। चाहे बात अध्ययन की हो या वाहन चलाने की हो, हमें पूरा ध्यान उस वक्त उसी कार्य पर लगाना चाहिए जो कार्य हम कर रहे हैं। तो इस चिंतन को आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए और पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर लिखते हैं, सृष्टि का चक्र समय प्रबंधन के साथ चल रहा है। दिन रात सुबह शाम का होना समय प्रबंधन की ही देन है। संसार का समस्त जीवधारियों का जीवन चक्र समय प्रबंधन पर ही टिका है। समय प्रबंधन पर केंद्रित 25 मई का चिंतन सार गर्भित था। लेखक गुलाब सिंह और चिंतन के आलेख को पढ़ने हेतु दीपक हटवार जी को हार्दिक बधाई। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा लिखते हैं, 20 मई को श्रीमती शैल शर्मा का चिंतन प्रेरणादायी और विचारणीय था। साधुवाद। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जिंदगी में चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टता की चाबी से ही खुलता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए ज्यादा तनावग्रस्त न रहें। परिस्थितियां कैसी भी हों, बदलती जरूर हैं।
1: सौम्या जी, देखिए अलग अलग दिनों में प्रसारित चिंतन की तारीफ में, समीक्षा में हमें कितने सारे पोस्टकार्ड मिले हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मिनट का ये चिंतन हमारे श्रोताओं को जीवन के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी देता है, और ये चिंतन ही हमें अपने बारे में, परिवार और समाज और देश के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि हमारी अच्छी सोच हमेशा हमें अच्छी दिशा की ओर ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मगलूर से पुनुराम साहू लिखते हैं, दीपक जी, देश की वाणी आकाशवाणी में 24 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा जी से दीपक हटवार जी द्वारा ली गई भेंट वार्ता सुनने को मिली। वर्मा जी ने आवाज की दुनिया में यानी आकाशवाणी में कब, किस प्रकार, किस रूप में सेवा प्रारंभ की और वर्षों तक कौन कौन से कार्यक्रमों का प्रसारण, संपादन, संकलन किया सब बता रहे थे। सुनते सुनते उन दिनों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। चाहे वो नगर दर्पण हो, मोर भुइयां हो, युवाणी गांव में कार्यक्रम या स्थल रिकॉर्डिंग के विभिन्न कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों को गंभीरतापूर्वक सजीवता से वो पेश करते थे। इस भेंट वार्ता के लिए श्याम वर्मा जी सहित भेंटकर्ता दीपक हटवार जी को हार्दिक बधाई।
1: श्याम वर्मा जी आकाशवाणी रायपुर के बहुत समर्पित उद्घोषक रहे हैं सौम्या जी, और उनकी आवाज़ में खासकर फरमाइशी कार्यक्रम, नगर दर्पण और भी विविध कार्यक्रम जो हैं वो हमारे श्रोता वर्षों तक सुनते रहे हैं, और उनके आवाज़ की यादें आज भी हमारे श्रोताओं के जहन में बहुत गहराई से बसी हुई हैं। तो इन्हीं यादों के साथ देश की वाणी आकाशवाणी का ये कारवां आगे बढ़ता रहा। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश और सुरेश यादव लिखते हैं, 24 मई को कृषि चर्चा कार्यक्रम सुना जिसमें गर्मी में खेतों की जुताई के महत्व एवं उनके लिए कृषि यंत्रों का उपयोग, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी डॉक्टर आर के नायक से सुनी जो हमें महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी।
1: 5 मिनट के कृषि चर्चा कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जानकारियां होती हैं सौम्या जी, और इसे सुनकर वे अपने कार्य को और भी ज्यादा उत्तम रूप प्रदान कर रहे हैं, ये जानकर हमें खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बेमित्रा से पूर्णिमा और पूजा सारथी लिखते हैं, 25 मई सोमवार को नमस्कार रायपुर में अपनी ज्ञान रूपी बातों की छटा बगराई अंकुर शुक्ल जी ने। नवतपा के बारे में बताया उन्होंने, और ये बताया कि एक ऐसा समय है जिसमें नवतपा जितना तपता है बारिश उतनी ही होती है। साथ ही 25 मई सन 1918 को जन्मे स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस जी की जीवन गाथा को दर्शाया, ऐसे क्रांतिकारी वीर को हमारा शत शत नमन। 25 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के मौके पर विपिन ठाकुर से अच्छी जानकारी सुनने को मिली। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस पर डॉक्टर विकास अग्रवाल से की गई बातचीत भी ज्ञानप्रद लगी। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: नमस्कार रायपुर कार्यक्रम हमारे उद्घोषक साथी बहुत मेहनत करके लेकर आते हैं सौम्या जी, और हर

0: रोज हमारे श्रोताओं के लिए इतनी सारी जानकारियां होती हैं, जनोपयोगी सूचनाएं होती हैं कि जिन्हें सुनकर उनके दिन की एक खूबसूरत शुरुआत होती है और उनके जीवन को भी बहुत सारी जानकारियों से वे समृद्ध कर रहे हैं। इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल लिखते हैं, 26 मई को मोरभुइया में हमर संस्कृति हमर साहित्यकार में कुबेर सिंह साहू जी से महेंद्र साहू जी की गोटबाज सुनी। कुबेर जी ने विदेशी साहित्यकारों की पुस्तकों का भी अनुवाद किया है। छत्तीसगढ़ी बोली के प्रति सबका लगाव होना चाहिए। मोरभुइया के संग के लिए साधुवाद।
0: मोरभुइया में हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, इस क्रम में हमारे अंचल के ऐसे साहित्यकारों को हम आमंत्रित करते हैं सौम्या जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छत्तीसगढ़ी साहित्य की रचना में समर्पित किया है और जब उनकी कृतियों की जानकारी जन जन तक कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचती है तो हमें भी बहुत आत्मसंतोष होता है कि हमारे साहित्यकारों की कृतियों की जानकारी जन जन तक पहुंच रही है और आगे भी जानकारियों की ये सरिता यूं ही प्रवाहित होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हथनीपारा भाटापारा से चोवाराम और हरीश वर्मा लिखते हैं, 26 मई को आपके पत्र में इस माह के श्रोता चर डोंगरी पिपरिया के दुर्गा राम साहू से जो बातचीत की गई वो हमें बहुत अच्छी लगी। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र है भाटापारा से ही अब्दुल मजीद कुरैशी और रिहाना बेगम का।
0: आपके पत्र कार्यक्रम में माह के अंतिम बुधवार को हम अपने एक श्रोता से बातचीत करते हैं सौम्या जी, और ये जो नई शुरुआत की गई है इसे हमारे श्रोताओं ने बहुत सराहा है
1: जी।
0: तो बस हमारे सभी श्रोताओं को इसमें समय समय पर हम मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे। यूं ही आप कार्यक्रम सुनते रहें, इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 28 मई को अनुरोध गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया मधु साहू ने। 31 मई को आप मन के गीत लेकर आई अर्पिता बेडेकर। गीत संकलन बीरभान साहू का था। इन दोनों ही कार्यक्रमों की तारीफ में पत्र भेजे हैं दतरंगी से विश्राम और पार्वती यदु ने और सिर्री गातापाड़ से धनेश्वरी और ओम प्रभास साहू ने।
0: वही हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों को हमारे श्रोता बहुत ही लगन के साथ चाव के साथ सुनते हैं और उन कार्यक्रमों में जब उनके नाम भी खूबसूरत गीतों के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको जो खुशी मिलती है उस खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता सौम्या जी। तो आपकी खुशी यूं ही कायम रहे इन्हीं कामनाओं के साथ पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: पोस्ट कार्ड के बाद अब हम पढ़ रहे हैं दीपक जी ईमेल्स।
0: तो ये पहला ईमेल किसका है
1: जी? बघेरा दुर्ग से हैं ये बीएल वैष्णव जी। आप लिखते हैं, 1 जून को कार्यक्रम कथायन में चंद्रिका चौधरी जी की कहानी सुनी। उनका कथायन बहुत ही मार्मिक था। बात सही है, गुजरे हुए पल को जब याद करते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है, मगर उस पल को वापस तो नहीं ला सकते और न ही गुजरे समय को बदल सकते हैं। गुजरे हुए पल को समझने की ज़रूरत है। गुजरे हुए हर पल को सोचकर वर्तमान के समय को ना खोएं, यही समझदारी है। और हमारे जीवन के वर्तमान पल को भी जीवन में बड़ी प्रसन्नता से हंसकर खुशियों से जीना ही जीवन की बड़ी सफलता है। यही जीवन का असली आनंद है। इतने अच्छे कथायन के लिए चौधरी जी को और आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई।
0: कथायन में प्रसारित कहानी इन्हें बहुत मार्मिक लगी
1: जी।
0: और वाकई सौम्या जी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी अपनी दास्तां को बयां कर रही हैं। और कथायन में ऐसी मार्मिक कहानी जिनका कथानक हर आम इंसान से जुड़ा हुआ है, खासकर पुरानी यादें जब हम दोहराते हैं तो उन यादों में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं और ये पुरानी यादें जो है ना वो इंसान को भावनात्मक रूप से बीते हुए समय के साथ जोड़ देती हैं। तो इस तरह से एक चलचित्र हमारे मानस पटल पर कहानी को देखकर उभरने लगता है। कहानी आपको पसंद आई, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: गंडी टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन और कचरीबाई देवांगन लिखते हैं, दीपक जी, छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोरभुइया में डॉक्टर सियाराम साहू के वार्ता छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु वार्ता के मध्य ले बताइन 12 में 4 गिस कतका बचिस 8 बचिस मगर कुछ नहीं बचाए। सही बात आए, 4 महीना अगर पानी नहीं गिरिस तो किसान मन पर कुछ नहीं बाचे। सही बात, ये वार्ता की जत का भी तारीफ करो कम है। फिर कहानी सुनें फुलवा डॉक्टर दीप शिखा पटेल ले, ओकर बाद सुनें डॉक्टर मीता अग्रवाल के कविता पाठ, बहुत अच्छा लगिस। संपादक महेंद्र साहू के साथ साथ सबो जनला हार्दिक बधाई। और

0: देखते हैं 5 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम इनसे मिलिए सुना, जिसमें पद्मश्री 2026 से सम्मानित एक प्रतिष्ठित समाज सेविका श्रीमती सुनीता 20 वर्षों के निस्वार्थ सेवा भाव और समर्पण के साथ चिकित्सा और जनजाति कल्याण के क्षेत्र में अतुलनीय और सराहनीय योगदान को जानने का अवसर मिला, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी और अनुकरणीय रहा। वास्तव में हमें इस बातचीत के द्वारा यही जानने को मिला कि श्रीमती सुनीता गोडबोले जी का दृष्टिकोण सिर्फ दान करना ही नहीं रहा, बल्कि आदिवासी समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना रहा है। खतरे और आर्थिक तंगी की परवाह किए बिना दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दी गई उनकी सेवा मानवता का अनुपम और जीवंत उदाहरण है। उपयोगी और महत्वपूर्ण भेंटवार्ता के लिए श्रीमती गोडबोले जी, रमाशंकर जी और आकाशवाणी रायपुर को हार्दिक बधाई। और इसी कार्यक्रम की समीक्षा में ये मेल हैं, दीपक जी मेघापारा से रामकुशल और संतोषी पटेल, नानघाट कातलबोर से भाग सिंह और भाग्यश्री राजपूत, करही बदर से पुरुषोत्तम और शारदा निर्मलकर, और रायपुर से भारती और वरुण राठौर।
1: इनसे मिले कार्यक्रम के इस अंक में जिनसे बातचीत की गई थी सौम्या जी, उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया श्रीमती सुनीता गोडबोले। और ये अलंकरण उनके लिए नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव की बात है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बस्तर अंचल में लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। और उनका ये समर्पण, उनका ये सेवा भाव और जन जन के लिए किए गए उनके ये कार्य हम सभी के लिए अनुकरणीय है, और हमें भी अपना जीवन औरों के लिए समर्पित करने की एक प्रेरणा इस बातचीत के माध्यम से मिली, जिसे आपने गौर से सुना। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित नवा बिहान कार्यक्रम सुनने को मिला। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य और पूर्व अधिकारी के सुब्रमण्यम जी से नेमीचंद साहू द्वारा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित चर्चा की गई। कार्यक्रम में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही इन पर नियंत्रण के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है, बल्कि हमें प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को कम करने, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने और अधिक से अधिक पौधरोपण और उनके संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण सभी प्राणियों के लिए जरूरी है और इसके लिए सामूहिक सहभागिता अनिवार्य है। ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जन जागरूकता बढ़ाने वाला रहा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने के सराहनीय प्रयास के लिए आकाशवाणी परिवार बधाई और साधुवाद का पात्र है। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है रायपुर से रतन जैन और कोकिला जैन का।
1: सौम्या जी, देखिए इस बहुत ही विस्तृत रूप से लिखे गए पत्र में जी पर्यावरण को लेकर कितनी अच्छी बातें कही गई हैं, और जो पर्यावरण से संबंधित असंतुलन उत्पन्न हो रहा है उसे लेकर चिंता भी की गई है जी। तो इसमें सुब्रमण्यम जी ने जो जो जानकारियां दी हैं, उन जानकारियों को अमल करके अगर हम सभी अपने घर के आसपास पौधारोपण करें और उनकी देखभाल करें, तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके समाधान के लिए एक सार्थक कदम हो सकता है। तो हम सबको अपनी वसुंधरा की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाली इस भेंट वार्ता के माध्यम से जो संदेश मिला है, उस संदेश को सार्थक करने का प्रयत्न हम अवश्य करेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इन पत्रों के लिए आपको।
0: अड़ार नानघाट से माखन और चांदनी वर्मा लिखते हैं, 6 जून को समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर उमेश चंद्रा से रमाशंकर की मस्तिष्क रोग कारण लक्षण एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी बहुत प्रेरणादायक लगी। आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई।
1: डॉक्टर की सलाह के हर अंक में शरीर से जुड़ी अलग अलग समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की जाती है सौम्या जी। और इसके प्रसारण का उद्देश्य यही है कि हमारे श्रोता अपने स्वास्थ्य

0: के प्रति सदैव सजग रहें, सावधानी बरतें, तो विभिन्न बीमारियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको।
1: वैभव जैन और चिराग जैन रायपुर से लिखते हैं, बातों बातों में कार्यक्रम में शनिवार 6 जून को विषय था पर्यावरण संरक्षण, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी, संदर्भ था अंबिकापुर का कैफे गार्बेज, पहुना थे रितेश सैनी, नगर निगम अंबिकापुर, भेंट करता थे आलोक शुक्ला। रितेश जी ने बताया कि हमारा कैफे गार्बेज कचरा संग्रहित करता है और लाने वाले को भोजन के लिए टोकन देता है। इस गार्बेज कैफे की माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में तारीफ की थी। इस प्रेरक भेंट वार्ता के लिए आकाशवाणी परिवार को साधुवाद।
0: देखिए, ये कार्यक्रम स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को सजग रहने की सीख देता है और अपने आसपास को अगर हम स्वच्छ रखने का प्रयास हर व्यक्ति करे सौम्या
1: जी,
0: तो यकीनन हम स्वच्छ भारत के 100% होने के स्वप्न को भी साकार बहुत जल्द कर सकते हैं। कार्यक्रम ने आपको प्रेरित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और मोरज जंघेल लिखते हैं, 6 तारीख के गाथा झरोके से माँ सत्यवत राजा मोरध्वज के किस्सा सुने वन मिलिस। कार्यक्रम के लेखक परदेशी राम वर्मा और प्रस्तुति रहीस मोहन सिंह रामानी के। कार्यक्रम बड़ सुघड़ लगिस, बने प्रस्तुति बर जम्मो पात्र मल्ला बहुत ले बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है लेवाई से गुलाबदास राजादास मानिकपुरी का।
0: आकाशवाणी के संग्रहालय में बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं सौम्या जी, जिनका पुनः प्रसारण भी हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है और उसी का प्रमाण आपके ये पत्र हैं। हृदय से धन्यवाद।
1: धरसीमा से छेदुलाल यादव और सीता यादव लिखते हैं, 7 जून को नमस्कार रायपुर प्रस्तुत किया दीपा जी ने, सुमधुर गीतों के साथ बहुत सारी जानकारी दी जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी एक जानकारी थी। ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। शहर में भूजल स्तर दिनों दिन गिर रहा है जिससे पानी की समस्या बढ़ते जा रही है। वास्तव में हर घर वाटर हार्वेस्टिंग जब तक नहीं लगेगा तो भूजल स्तर गिरते जाएगा। आखिर में दीपा जी ने एक पेड़ लगाने की बात के साथ उसकी देखभाल करने की बात कही जो बहुत अच्छी लगी, जिससे पर्यावरण बना रहेगा। नमस्कार रायपुर की बहुत अच्छी प्रस्तुति हेतु बधाई।
0: देखिए, नमस्कार रायपुर में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ पृथ्वी के गिरते भूजल स्तर पर भी चिंता व्यक्त की थी सौम्या जी, और ये चिंता जब व्यक्त की जाती है तो हम सभी को सजग हो जाना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। खासकर घरों के आसपास के नलों को कहीं भी अगर आप बहता हुआ देखते हैं तो उन्हें ज़रूर बंद करवाने की कोशिश करें, ताकि हम पानी जैसे अमृत को व्यर्थ में बर्बाद न होने दें। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाटापारा से हरमिंदर चावला लिखते हैं, जन जन की वाणी आकाशवाणी के 90 वर्ष के महापर्व पर आकाशवाणी रायपुर से एक श्रृंखलात्मक कार्यक्रम जो प्रत्येक रविवार को आकाशवाणी रायपुर के प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर के अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा था, जिस हेतु इस कार्यक्रम के संयोजनकर्ता प्रिय दीपक हटवार जी को एक श्रोता हृदय की ओर से बहुत आभार। ये एक ऐसी अनुभूति है दीपक जी, जिसकी प्रशंसा हेतु शब्दों की अभिव्यक्ति के बजाय हमारे मौन को समझें। दिनांक 7 जून को इस श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम, जिसमें आकाशवाणी रायपुर की पूर्व उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव जी के सेवा काल से जुड़े अनेक संस्मरणों को साझा किया गया। इस कार्यक्रम को सुनकर हमें भी ये स्मरण हुआ कि हमें भी एक रेडियो श्रोता के रूप में आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए 50 बरस हो चुके हैं। आज श्रीमती कल्पना यादव जी की आवाज़ और उनकी बातों से 1977 का वो दिन याद हो आया जब स्मृति शेष श्री लाल राम कुमार सिंह, श्रीमती कल्पना जी, कर्नल यादव जी हम श्रोताओं के अनुरोध पर भाटा पर आए थे, तो श्री यादव साहब का खुली जीप से लॉन्ग बूट के साथ सैन्य छवि के अनुसार कद काठी से उतरना आज भी यादों में बसा हुआ है। और दीपक जी, इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है बठिना पाटन से बलकरण और ज्योति वर्मा का, बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम और योगेश्वर साहू का, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू का, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता का और नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा का।
0: सौम्या जी, देखिए, इन्होंने कितनी पुरानी बात का जिक्र किया है ना, और ये जो पुरानी यादें हैं ये आज भी हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा हो जाती है जब किसी वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता से हम बातचीत करते हैं। और कल्पना यादव जी से की गई इस बातचीत के माध्यम से 80 के दशक की और उसके पहले की बहुत सारी बातें उन्होंने याद की, अपने साथ के उन उद्घोषकों को भी उन्होंने याद किया जिनके कार्यक्रम आज भी आकाशवाणी रायपुर से सतत रूप से प्रसारित होते हैं, और उन उद्घोषकों को हमारे अंचल के श्रोता कभी नहीं भूल पाएंगे जिनके बनाए हुए कार्यक्रमों से आकाशवाणी रायपुर को एक नई ऊंचाई मिली। तो इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिरनपुर खुर्द गंडई से अजीत कुमार और मनीष जंगेल लिखते हैं, 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम सुनने को मिला। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश और वाचन विकल्प रंजन शुक्ला जी का था। कार्यक्रम में आकाशवाणी की शुरुआत से अब तक की उपलब्धि के बारे में, छत्तीसगढ़ के जाने माने हस्तियों से आकाशवाणी के बारे में जानकारी सुनी। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: सौम्या जी, जब किसी कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की जाती है तो उसके प्रसारण के बाद जब हमारे श्रोताओं के पत्र हमें मिलते हैं ना, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। और वाकई 8 जून को सुबह प्रसारित इस कार्यक्रम के लिए समाचार एकांश द्वारा बहुत मेहनत की गई थी, जिसे आपने बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको।
1: घटारानी अंचल फुलझड़ से योगेश्वर साहू और डुमेश्वरी साहू लिखते हैं, 2 जून की दोपहर आप मन के गीत कार्यक्रम लेकर आईं शुभ्रा ठाकुर। कार्यक्रम में श्रोताओं के फरमाइशी ईमेल, पोस्टकार्ड, पत्रों को शामिल कर बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी की सुनवाएं। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, शुभ्रा ठाकुर जी की आवाज छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों के लिए गुरतुर और मधुर है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज मन को भा गया, उत्कृष्ट और प्रभावी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 3 जून के ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी की सुनव कार्यक्रम में हमर मयारो दीदी अनुभा अग्रवाल जी, श्रोता संगवारी मल्ले भेजे गए ईमेल और नाम शामिल कर रिकिम रिकिम ले की सुनाई जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला हमर मया भरे बधाई। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है चरडोंगरी पिपरिया से कुमारी साहू, माया साहू, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार, योगेश साहू, तेंदु भाटा मगरलोड से उमिंद कुमार और देविका निशा। 4 जून के दिन ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने सौम्य रिजवी ने पेश किया जो हमें बहुत पसंद आया। श्रोताओं के ईमेल अधिक से अधिक शामिल किए, साथ ही सदाबहार नगमे सुनाएं, दिल से धन्यवाद। ये मेल था दीपक जी गणेश धाम परसोली से जितेंद्र दास मानिकपुरी और मिलउदास मानिकपुरी का, और इसी कार्यक्रम को पसंद किया टेकापार बालो से चिंताराम और रवि प्रकाश यादव ने। कोई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 6 जून के फिल्मी फरमाइशी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में तारकेश्वरी जी ने श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल पत्र और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनाए जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को पसंद किया गंडई टिकरीपारा से दीपक कुमार, जयश्री देवांगन, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम, अजय कुमार साहू, भूत कछार लोरमी से दुर्गेश और निर्मला मरकाम। चांदनी चौक गंडे पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन लिखते हैं, 7 जून के मंझनिया बेरा 12:30 बजे आप मन के गीत कार्यक्रम ला बड़ सुघर ध्यान लगा के सुनें, जेन ला हमर बीच में परोसिस सुंदर सुंदर मीठ मीठ बोली के बुलैया हमर मयारू संगवारी अनुभा अग्रवाल, आनी बानी के गीत संगीत के समागम और बड़कन श्रोता संगवारी मन के ई मेल और पाती ला सकेल के फरिया फरिया के विस्तार पूर्वक पढ़िस कार्यक्रम ला सुन के चोला गदगद होगे। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है फुलझर घटारानी से यामिनी और मुस्कान साहू, भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह और राजकुमार मरावी ने। 7 जून 2026 दिन रविवार को हमें फोन इन फरमाइश कार्यक्रम सुनने को मिला जिसे पेश कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी जी, जिसमें श्रोता क्या काम करते हैं, गांव कैसा है, गर्मी में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, श्रोताओं के पसंद के गीत भी सुनवाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रवीणा त्रिपाठी जी को दिल से धन्यवाद। दीपक जी, ये मेल था ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता का। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है हजदा नंबर 2 से कमलेश और जितेंद्र साहू जी ने। लोरमी ग्राम करुआ नार से गोमती रजक और काजल रजक लिखते हैं, 8 जून के फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनव कार्यक्रम में श्रोता संगवारी मल्ले फोन मा गोटबात और गांव शहर कामकाज के बारे में पूछताछ करके हमार पसंद के बहुत सुघर सुघर के सुनाइन जेखर मनमोहक प्रस्तुति बर तारकेश्वरी और आकाशवाणी परिवार ला कोरी कोरी बधाई। और इसी कार्यक्रम को पसंद किया है ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन और उर्वशी देवांगन जी ने।
0: सौम्या जी, देखिए कितने सारे फरमाइशी कार्यक्रम हैं हमारे और इनकी तारीफ में हमारे श्रोताओं के कितने सारे पत्र आए हैं
1: जी।
0: और ये फरमाइशी कार्यक्रम जो है ना, ये हमारे आकाशवाणी केंद्र और श्रोताओं के बीच में कहा जाए रिश्तों की एक डोर है, और ये डोर बहुत पुरानी और बहुत मजबूत है
1: जी।
0: और इस डोर की मजबूती हमारे श्रोताओं के इन प्यार भरे पत्रों से आज भी कायम है और आने वाले दिनों में भी यूं ही कायम रहेगी, यही हम कामना करते हैं और इन सभी पत्रों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब चलने का वक्त हो रहा है, तो नोट कीजिए ईमेल आईडी raiapkepatra1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 492001। आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए दीपक
1: और सौम्या को नमस्कार।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर का है।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज सुनिए श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार।
1: मिस मेरी चिस्ले नाम की एक अंग्रेज बहन सन 1934 में हिंदुस्तान में थी। उन दिनों बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जहाज से उतरते ही वह कांग्रेस कैंप में पहुंची और मेरे झोपड़े में आकर उसने मुझसे कहा, मैं मीरा बहन को जानती हूं और मीरा बहन के साथ ही मैं यहां आने वाली थी, पर किसी कारणवश उनके एक आध हफ्ते पहले ही मैं विलायत से रवाना हो गई। गाँव में रहकर भारत की सेवा करने की उसकी इच्छा थी। उसकी बातचीत से मैं कुछ प्रभावित नहीं हुआ और मुझे लगा कि वह हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा महीने ठहरने की नहीं, पर मेरी ये भूल थी। मिस मेरी बार को, जिन्होंने बैतूल मध्य प्रदेश से कुछ मील दूर खेड़ी गांव में पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, वह बहन जानती थी। मेरी बार मिस चेस्ले को अपने साथ वर्धा ले आई और कुछ दिन तक हम सब वहाँ एक साथ रहे। मिस चेस्ले का निश्चय देखकर तो मैं चकित रह गया। मेरी बार के साथ उसने खेड़ी में ग्राम सेवा का कार्य आरंभ कर दिया। भारतीय पोशाक पहन ली और अपना नाम तारा बहन रख लिया। खेड़ी में उसने इस कदर सख्त परिश्रम से काम किया कि बेचारी मेरी बार तो देखकर हकबका गई। वह मिट्टी खोदती और सिर पर टोकरी रखकर ढोती। अपना भोजन उसने इतना सादा बना लिया था कि उसका स्वास्थ्य तक खराब हो गया। कनाडा से काफ़ी पैसा आता था, पर उसमें से वह सिर्फ 10 रुपए के लगभग ही अपने लिए रखती और बाकी सब ग्राम उद्योग संघ को या हिंदुस्तान के उन भाई बहनों को दे देती थी जिनके संपर्क में वह आती थी और जो उसे मालूम होते थे कि आगे चलकर वह अच्छे ग्राम सेवक बन सकते हैं और जिन्हें रुपए पैसे की कुछ ज़रूरत होती थी।

मैंने उसे बहुत ही निकट से देखा। उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। मानव प्रकृति की अच्छाई में उसकी बहुत श्रद्धा थी। वह सच्ची ईसाई थी, क्वेकर संप्रदाय की, पर उसमें कोई संकीर्णता नहीं थी। दूसरों को अपने धर्म में मिलाने में उसका विश्वास नहीं था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वह ग्रेजुएट थी और एक अच्छी शिक्षिका थी। लंदन में कई साल तक उसने एक स्कूल चलाया था। उसने फौरन ये महसूस कर लिया कि हिंदी उसे ज़रूर सीख लेनी चाहिए और नियमित रीति से वह हिंदी का अभ्यास करने लगी। बोलचाल की हिंदी सीखने के लिए वह कुछ महीने वर्धा के महिला आश्रम में आकर रही और वहीं उसने दो बहनों के साथ गर्मियों में बद्री केदार जाने का विचार किया। मैंने उसे इस खतरनाक यात्रा से आगाह कर दिया था, लेकिन जब वह एक बार निश्चय कर लेती थी तो ऐसे ऐसे साहसिक कामों से उसका मन फेरना मुश्किल होता था। बद्री केदार की भयानक यात्रा उसे करनी ही थी, इसलिए अपने मित्रों के साथ उस दिन वह रवाना हो गई। 15 मई को कनखल से मुझे यह संक्षिप्त तार मिला, तारा बहन का शरीरांत हो गया।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा में महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर कथा। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

0: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, बोल शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौसाद का है।
1: गोरी गुजरिया से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: करी थई त थई त थई थई थई धाक दिनक दिन धाक तिनक तिन धाक दिनक दिन धाक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: अभी आपने सुना सलील चौधरी के संगीत सजी फिल्म मधुमिति का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की थी और गीत लिखा था शैलेंद्र ने।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुनी साहिर लुधियानवी की रचना। इसे संगीत में पिरोया था रवि ने। आवाजें थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। फिल्म थी वक्त।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आइए अब सुनते हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। फिल्म है सीआईडी, संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

सीआईडी फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का आनंद आप सुबह 10:30 पर पुनः उठा सकेंगे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं पीटी उल्लास कुमार। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं तुलसीदास जी का लिखा ये भजन इनकी इन स्वर में।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे पीटी उल्लास कुमार। आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भर कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से मेघ गर्जन की गतिविधि बढ़ने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खुर्सीडीह बोरई मार्ग पर एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में महिला आरक्षक हेमलता ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रामचंद्र भागवत का वायलिन पर बजाया राग बसंत मुखारी में दो गतें। विलंबित और द्रुत गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगति की है कुमार पंडित ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना रामचंद्र भागवत का वायलिन पर बजाया राग बसंत मुखारी में दो गतें, विलंबित और द्रुत गतें तीन ताल भी निबंध थी। तबले पर संगति की थी कुमार पंडित ने। मीडियम वेव एफएम 8 पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आई का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है, माफ कीजिएगा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

लीजिए सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। बोल अनजान के हैं और आवाज़ लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना फिल्म आगेरे लग जा का गीत। आवाज़ें थी सुषमा श्रेष्ठ और किशोर कुमार की, बोल साहिर लुधियानी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी फिल्म आए दिन बहार के कई गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के हैं।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम पुष्पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका के प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।

आओ देखथन हम एदा ईमेल भेज के कौन हा अपन फरमाइश पहली भेजे है। तो इमें खल्लारी भीम खोज ले है जी एल साहू, सरोज साहू, छोटी और पिंकी रोहासी ले है मुकेश साहू, नंदी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू, पलारी ले संतरा वर्मा, प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा और निखिल, धमनी राजिम ले दुष्यंत कुमार बंजारे और आशीष कुमार बंजारे, उत्तर वसुंधरा नगर भिलाई तीन ले चरोदल है संजय पांडे, अंजलि पांडे, अमरीश पांडे, उषा पांडे, इन्हें ले हमारो संगवारी हैं संतोष पांडे, चित्रा पांडे और प्रांजल पांडे। पुराना बस स्टैंड भिलाई तीन ले है नौसाद अहमद, ग्राम भलेसर महासमुंद ले है बलराम सेन, इंदु सेन, छगन सिन्हा और द्वारिका सिन्हा, अम्बागढ़ चौकी ले है रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, भानबेड़ा मुंगवाल ने हैं भारत राम पटोरी, जयंती पटोरी, हेमंत पटोदी, उमंग पटोदी और मोक्ष पटोदी, सुनैनगढ़ कटैले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा और पुष्पांजलि वर्मा, जिला नारायणपुर ले हैं दिनेश्वरी बंजारे और मनीष बंजारे, दत्रेंगी ले हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आप सब हमला ईमेल पठोए हो नकुल जायसवाल और सावित्री कहार के गाए ये गीत पर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: सोम कुमार ठाकुर के गाए इस गीत के लिए ये गीत भर हमला ईमेल पठोए हैं। एमए पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले हैं उत्तरा दिवाकर भाटापारा ले हैं हिमकेश्वर साहू करण साहू राहुल साहू चंपा साहू दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत पूरब साहू वीरा साहू हर साहू राम कुमार सेन और विक्की सेन नया पारा गंजवाड़ भाटापारा लेहे विष्णु साहू वीरा साहू चांदनी चौक गंडई पंडरिया लेहे पवन कुमार सेन प्रभा सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन सहिया मालगी लेहे सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश चंद्रवंशी प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी सहसपुर लोहारा लेहे छुटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू कृष्ण कुमार साहू दुलीचंद साहू सतीबाई साहू चिरमिरी कुरासिया कॉलरी लेहे इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर धमनी किरवैले मानेलाल धीवर युवांशु धीवर और कृष्णा डौंडी लोहरा बारोदले बालोद कबीर रेडियो संगले देवेश ग्राम पहरा अहिवारले पोषण बंशोर चंद्र किरण बंशोर गिर्रा पलारी ले वीरेन्द्र साहू सोनू साहू आशीष और कपिल साहू बलौदा बाजार ले दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। आप सबके पसंद में ले आपन ले सुनवाथन सोम कुमार ठाकुर के गाए ये गीत।

तखतपुरले मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा, कर्माचौक लोहारीडी कवर्धाले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, सुशांत साहू और निशांत साहू, मदनपुर कवर्धारे लक्ष्मण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, श्रवण कुमार साहू, बाघा मुड़ा कोमाखानले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदी देवांगन, रसेड़ाले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, कांकेर संबलपुरले फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, माँ महामाया चौक मेघापाराले राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, लक्षणपुरले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार, अड़ार नाथघाटले माखन वर्मा, चांदी वर्मा, भूपेश और दीपेश वर्मा, लोरमी ग्राम चचड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, इन्हें ले हमारो संगवारी हैं जगदीश सिंह मरावी, सावित्री मरावी, चमन मरावी, अमन मरावी और सुमित मरावी, राजकुमार मरकाम, भगवती मरावी, मोहन सिंह मरावी, रिंझा मरावी, तनु राही और सुंदरगढ़ विलयगढ़ ले जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जाह्नवी और तृप्तेश देवांगन, खम्हार मुढ़ा ले शिवायगिरी गोस्वामी और एकांशी गोस्वामी। आप सब हमला ईमेल पठोए हो राजू देशलहरे और बुधिया गायकवाड़ के गाय ये गीत पर, तो आपके पसंद पर सुनवाथन ये गीत।

अगलैया गीत सुने बर हमला ईमेल पठोए हैं आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू मोगरा केसरी पिंकी और प्रीति साहू ग्राम पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीणा पांडे और विनय शेखर पांडे हटोत बाजार लाहौत ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल और राजकुमारी पटेल बघेरा दुरुग ले संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ नामदेव और सौर्य नामदेव ग्राम दहिहान बांधा बाजार राजनंदगांव ले हरिओम साहू रेवाराम साहू रानू सरस्वती प्यारी राम साहू और परमानंद साहू पथरिया भरिया वाले चंदूलाल सिंघरौल नारायणी सिंघरौल नोमेश सिंघरौल नेहा और वन्या सिंघरौल भुरमदेव ले जीवनलाल साहू राजबाई साहू लोकनाथ साहू और विदिका साहू ग्राम घरोद ले नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू और ज्योति ठाकुर भुरमदेव कुडारले कन्हैया सोनी बिसेलाल पटेल सुखलाल पटेल और पीला सिंह देवरी भाटापारा ले के आर साहू आकाश मुरली क्षत्री कमलेश ज्ञानेश्वर रजक उमेश रजक जनक यादव गंडूलाल रजक और पुनेश्वर रजक समलीडी नवापारा ले मुकेश गुप्ता श्रद्धा गुप्ता आदिति गुप्ता राधि गुप्ता और अंकु राघव गुप्ता पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता दुर्गाराम साहू अजय कुमार कुमारी माया साहू और जय किशन साहू आप सबके फरमाइश में आप मतलब सुनवा था नरेश निर्मलकर और राकेश तिवारी की गाय ये गीत।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: ग्राम कुटेना, पांडुका, गरियाबंदले, झामेश्वरी, पुष्पलता, भूला, कीर्तिमान, उझरना, बनियापारा, धमतरीले, रामचंद माखीजा, ग्राम बेंगाटोला, मोहला मानपुरले, कुमारी इंदु और कुमारी चांदनी सिन्हा, भाटापाराले, बचकामल, ग्राम कोयलारी, कवर्धाले, कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेन्द्र चंद्राकर और साहिल चंद्राकर, पाहंदा पलारीले, सतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और ईशांत डे, सोंगा मगरलोडले, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, गंडे पंडरियाले, कन्हैया यादव, निर्मला यादव, चुवाराम यादव, कुमार यादव, शिवा यादव, राज यादव, चिंटू और तरुण यादव, गंडे टिकरी पारले, जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ देवांगन और ऋचा देवांगन, मोहरेगा राजिमले, खुमान सिंह पटेल, तेजस्विनी मिष्टी और एकांश पटेल, ग्राम खुंदरा, उदयपुर सरगुजाले, जीवन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा और कालेश्वर सिंह, नेवई उतैले, विक्की देवांगन, उर्वशी देवांगन, जतीन जयंताऊ, कुनिका, दीप शिखा देवांगन। आप सबके फरमाइश में अपन सुनवाथन राम अवतार साहू, यामिनी साहू के गाय ये गीत।

रमेश ठाकुर और लता खापर्टे के गाए गीत पर हमला ईमेल भेजे हैं टेक्का पार बालोदले चिंता यादव, रवि प्रकाश यादव और परशुराम यादव, रिंगनीले दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बाजारवाड़ महासमुंदले भीष्मदास, दर्वदा हीरमणि, दीपक और लक्ष्यदास, लघान पंडरियाले उत्तम बघेल, रखमणी बघेल, साहिलो भारती बघेल, गणेशधाम सुरसुरीले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेशदास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई, रानीगांव नगरी धमतरीले खिलेश कुमार साहू, चित्रेखा साहू, शुभम उसेजल साहू, ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक राजनांदगांवले अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता, सलोनी राजनांदगांवले पियांशु, गौरव साहू, तोरणलाल साहू, देवचरण साहू, हेमा, वेदांत और वैभव साहू, मड़ोदा जालबांधाले पारकदास साहू, किरण साहू, जैसाकर चरामाले असाड़ूराम निषाद, खिलाव निषाद और ऋषभ निषाद, कोल्हापुरी दुर्गले सूरज भान साहू और कमला बाई साहू। आप सबके पसंद में आप मिले सुनवाथन रमेश ठाकुर और लता खापर्डे के गाए ये गीत।

सिंगारपुर पहली मेटले चिंताराम धुर्वे कामीन चंद्रध्वज और सानू धुर्वे धरसीवा बस स्टैंड ले छेदूलाल यादव सीता यादव इंदिरा नगर भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा राजू नेहा जगदीश देवांगन बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकमराम साहू योगेश्वर साहू हेमलता साहू और टिकेश्वरी साहू आर्यनगर कोहका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार जंघेल अजीत कुमार जंघेल आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल अमलीडीह साजा ले खिलेश्वर सिंह चौहान और मालती देवी चौहान डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभी राधिका गजभी बेबी अनिष्का और तन्मय गजभी है। तेंदुभाटा मगरलोड ले उमेद कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण और शिवा निषाद पोटियाकला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू सीमा साहू गुढ़ाराज ले मनोज साहू चित्रेखा साहू देवेंद्र साहू लवीना चंचल वासनिया गरिमा साहू ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी रानी रजनी मरावी राहुल और पूजा मरावी कुईग्राम भंगीटोला ले ननकराम धुर्वे जामुनबाई धुर्वे और फीरतराम धुर्वे। आप सबके पसंद में आपन सुनवा थन बुद्धि सागर शर्मा और रानी रजक के गाय ये गीत।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।

0: काखर बात करत हस?
1: मैं बात करत हौ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
0: वो कैसे सुमित?
1: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठमना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
0: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
1: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
0: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

परसाटोला मगर चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारनी मसिया, सुंदरपारा रुहासी ले डगेसर राम साहू, नूतन साहू और गौरव और घनश्याम साहू, दतरंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, बाजारपारा बिमित्रा ले भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, लकी सिन्हा, ग्राम पंचायत भदरसी ले घनाराम सेन, गीतेश सेन, दीपेश सेन, निर्मला सेन, पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन, ग्राम सिनी खुर्द रेंगाखार कबीरधाम ले मनसाराम पटेल, बुधियाबाई पटेल, भानुप्रताप पटेल और पायल पटेल, खमहरिया बिलासपुर ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति और संगीता चौबे, शीतला पारा केसरा पाटन ले बेदुराम सिन्हा, रामेश्वरी देवी सिन्हा, तिकेंद्र कुमार, तन्मय कुमार सिन्हा और वेदिका सिन्हा, मेचका ग्राम सुंडूर नगरी ले भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, लिखित नाग और तरणदीप नाग, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा और गायत्री वैष्णव, खैरागढ़ राज लालपुर ले मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, नेहा और येसु भीमटे। आप सबके पसंद में आप लोग सुनवाथन अलका चंद्राकर के गाए ये गीत।

0: एखरे संग सिरावत है यदारी के ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम आपके सेवा में प्रस्तुत करें संजय पाठक और अपनी सगवारी के लो जय चौहार। श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। गया अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने

0: छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, ईकेवाईसी और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री परिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आयोजित 16 दिवसीय कला प्रशिक्षण शिविर आकार का कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर में प्रदेश भर के 1,281 प्रतिभागियों ने 16 कला विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी रायपुर, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
0: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
0: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
0: जी।
1: तो आज
0: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
1: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
0: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
0: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
0: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
0: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
0: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
0: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: है। फिर क्या होता है,
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
0: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा।

0: जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
2: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी

0: उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
0: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओह।
0: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
0: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: मेरे से ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नीरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। आइए सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में S. फहीम अहमद का ये कलाम।

भूल चुका मैं कितनी बातें, याद मगर है तेरी बातें। लीजिए सुनिए अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:00 को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। समय है चित्रपट संगीत का। पहले सुनते हैं सुनिधि चौहान, कैलाश खेर और जसबिंदर नरूला की आवाज़ों में समीर की रचना। संगीत हिमेश रेशमिया का है। फिल्म का नाम है आपकी खातिर।

करण अर्जुन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। अंत में सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में समीर की रचना, संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है कसूर।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में कृष्णा कॉटेज फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था नीलेश मिश्रा ने, संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने। और इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2 बजे भी सुन सकते हैं मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

स्पोर्ट्स स्कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर आप सुनेंगे आज रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा सुलोचना बृहस्पति का गाया राग कौन सी कान्हड़ा में ख्याल। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर आप सुनेंगे रूपक छत्तीसगढ़ में पुरातत्व। आलेख डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम का होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे इला शंकर गुहा। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में सुनेगा अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस। साथ ही होगा क्रम पत्र मिला और युगल गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे नमन दत्त और साथी। और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे पी टी उल्लास कुमार।

कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें सुनेगा आज की बात में चिट्ठी मिले पत्रोत्तर, धान के नर्सरी और रोपाई प्रबंधन। आज की सलाह में सुनेगा PPR बीमारी माने भेड़ बकरी में होने वाले प्लेग रोग, कारण लक्षण और बचाव। इस विषय पर डॉक्टर संजीव राय, अतिरिक्त उपसंचालक जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर की सलाह। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9:15 पर और रात 10 बजे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रूपक, छत्तीसगढ़ में पुरातत्व। आलेख है डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम का। प्रस्तुत करता है इला शंकर गुहा।

अतीत की गौरवमय सांस्कृतिक परंपराओं तथा पुरातत्वीय धरोहरों से समृद्ध छत्तीसगढ़ का भूभाग सभ्यता के प्रारंभिक चरण से लेकर ऐतिहासिक काल के अवशेषों से परिपूर्ण है। बेकल पर्वत की श्रेणियों से निकली सदानीरा महानदी इस अंचल की

0: प्रमुख नदी है। शिवनाथ, जोक, अरपा, मनियारी, हसदो, रेंड, केलो, इंद्रावती सरिताओं के तट पर ताला, सिरपुर, खरौद, शिवरी नारायण, डीपाडीह, महेशपुर, रामगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं।
1: इन्हीं नदियों के तट पर प्रागैतिहासिक काल में आदि मानवों के निवास के प्रमाण हमें मिलते हैं। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, उंगना पहाड़ और बसनाझर इन्हीं आदि मानवों के संचरण की कहानी कहते हैं। इनके द्वारा आखेट के लिए प्रयुक्त विविध प्रकार के पाषाण उपकरण जैसे हस्त कोठार, खुरचनी, विदारणी, बसूले, छिद्रक और बटिया पहाड़ियों की तलहटी से प्राप्त होते हैं।
0: ये आदि मानव इन्हीं पहाड़ियों में प्राकृतिक रूप से निर्मित शैलाश्रयों में रहते थे। रात्रि में वन्य जंतुओं से सुरक्षा तथा विश्राम के लिए इन्हें शैलाश्रयों में ही निवास करना पड़ता था। इन शैलाश्रयों की भित्तियों में इनके द्वारा प्राकृतिक रंगों से निर्मित चित्रकारी बनैले पशु, बाघ, हाथी, हिरण, वानर, नीलगाय, अश्व, युद्ध, आखेट, नृत्य आदि के दृश्य प्रकृति के साथ संघर्ष की स्मृति के अतिरिक्त इनकी कलाप्रियता और मनोविज्ञान की द्योतक भी है।

0: पुराविदों के लिए ये शैलचित्र अध्ययन और शोध के विषय हैं। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित इन चित्रों में आज भी ताजगी और बांकपन है। रेखांकन और सीढ़ी नुमा शैली में निर्मित इन चित्रों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आदि मानव कुशल चितेरा नहीं था। प्रसिद्ध पुराविद स्वर्गीय डॉक्टर वाकणकर का विचार है।
1: एंडरसन ने भी पहले रायपुर के पास में सिंघनपुर के पेंटिंग रायगढ़ का, हमने जाकर इनका काल निर्धारण की दृष्टि से प्रचंड अभ्यास किया है। मुझे ऐसा लगता है ये मध्याश्म युग के हैं, यानी साधारणतः 6000 से लेकर 12000 वर्ष के बीच के हैं। बात ऐसी है कि शैलाश्रयों में खुदाई बहुत कम हुई है, और यदि खुदाई व्यवस्थित की जाए तो इनमें हमको अस्थि बंजर मिल सकते हैं, उसके आधार पर फिर अभ्यास किया जा सकता। अभी तक तो अस्थि बंजर मिले नहीं है उधर, इसलिए ये कहना बहुत कठिन है। परंतु ऐसा लगता है कि हो सकता है गोंड कुर्क जातियाँ जो उस क्षेत्र में रहती हैं, इन्हीं के ये पूर्वज रहे होंगे।
2: इसी समय महापाषाण संस्कृति का प्रचार भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर कहते हैं,
3: दुर्ग जिला के गुरूर विकास खंड में सोरर, अर्जुनी, करहीभदर, करकाभाट, धनोरा और कुलिया, ये इन ग्रामों में महापाषाण प्रभुत संख्या में विद्यमान रहे हैं। सन 1956 में सर्वप्रथम डॉक्टर M.G. दीक्षित द्वारा इनको प्रकाश में लाया गया। उस समय डॉक्टर दीक्षित से भी पूर्व, जिस समय कनिंघम यहाँ के सर्वेक्षण कर रहे थे, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, उस समय उनको सोरर से तांबे का एक कलश प्राप्त हुआ था, जिसको उन्होंने प्रीहिस्टोरिक एंटीक्विटी कहा था। यदि आपको यह बताऊं कि इन पांचों गांवों में विद्यमान मेगालिथ्स की कुल संख्या लगभग 15000 है तो आपको आश्चर्य होगा।
2: आदि मानव के द्वारा विकसित होती आखेट, युद्ध तथा नृत्य की संस्कृति कालांतर में ताम्राश्म युग तक पहुंचते पहुंचते कृषि सभ्यता में परिणित होकर धीरे धीरे महाकाव्यों के काल तक सुव्यवस्थित नगर, ग्राम तथा राज्यों में परिवर्तित हो चुकी थी।
0: ऐतिहासिक काल में ये राजनीतिक जय पराजयों के प्रभाव से अप्रभावित धार्मिक सौहार्द के भव्य मंदिरों, विहार तथा देव प्रतिमाओं के रूप में प्रकट हुआ। महान पराक्रमी राजाओं की यशोगाथा सिर्फ देवालयों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि स्वर्ण, रजत तथा ताम्र सिक्के, शिलालेख तथा ताम्रपत्रों के विवरणों से भी

0: है।
1: छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास मूलक अनुश्रुतियों का आधार रामायण तथा महाभारत के आख्यान है। रामायण में वर्णित भगवान राम के वनगमन का मार्ग तथा वनवास की कुछ घटनाओं से छत्तीसगढ़ के स्थल जुड़े हुए हैं। सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ियों में राम ने वनवास काल की कुछ अवधि व्यतीत की थी। बिलासपुर जिले में स्थित खरौद खरदूषण का स्थान माना जाता है। इसी के निकट स्थित शिवरी नारायण का संबंध शबरी भीलनी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम को इसी स्थल पर शबरी भीलनी ने जूठे बेर खिलाए थे।
0: रामकथा से संबंधित अनेक प्रतिमा फलक, सीताहरण, बालीवध, सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध, इस क्षेत्र के मल्हार, खरौद, जांजगीर तथा चंदखुरी के मंदिरों में प्राप्त होते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिहावा नगरी में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जिन्होंने राजा दशरथ से पुत्रिष्ठ यज्ञ करवाया था, जिससे उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। भगवान राम की माता दक्षिण कोसल की राजकुमारी होने के कारण ही कौसल्या कहलाई। कहा जाता है कि रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, जहां लव और कुश का जन्म हुआ था।
1: महाभारत के वन पर्व और सभा पर्व में पांडवों के द्वारा दक्षिण कोसल के राज्यों की विजय का वर्णन है। किंवदंतियों में बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर को परम भागवत राजा मूरध्वज की नगरी कहा जाता है। कथा है कि राजा मूरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरकर ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण को भेंट किया था। इस कथा का संबंध आरंग से भी जोड़ा जाता है। महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र अर्जुन तथा कर्ण का युद्ध कलचुरीकालीन कुछ मंदिरों सामतपुर, विजयपुर तथा मारो में द्वार शाखा पर प्रमुखता से उकेरित है। महाभारत का प्रभाव कालांतर में लोक जीवन में देखा जा सकता है। पंडवानी गायन की परंपरा इसका जीवंत उदाहरण है।
2: अरे राजा युधिष्ठिर।

0: राजा दुष्टिर के दूतों राजा दुष्टिर भेजे है। मैं कुछ खबर देखा तर राजा दुर्योधन के पास जाता हूँ, जाके राजा दुर्योधन ला कह देवे। दुर्योधन हा नजदीक में बुलाइस, चिट्ठी ला दे के प्रणाम करके कथे महाराज, राजा युधिष्ठिर है चिट्ठी ला भेजे हवे हो। भगवान युधिष्ठिर के कहना है किरण भूमि ला चुने खातिर मार भैया दुर्योधन जल्दी आ जाए। राजा दुर्योधन सुन के चिट्ठी ला पढ़ करके मुंह में पसीना छूट गए। अरे हो यह युद्ध सत्य मजाना, अब मैं जान रहे हो सही में युद्ध हुई।
1: छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जीवन धारा महानदी देश की एक प्रमुख नदी है। पुराणों में इसे अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी कहा गया है।
2: महानदी के तट पर अनेक प्रसिद्ध नगर, तीर्थ, व्यापारी केंद्र स्थित थे, जिनमें राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण, खरौद, सोनपुर, ययातिपुर तथा कटक उल्लेखनीय है।
1: ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का स्पंदन मौर्य युग से प्रारंभ होने लगता है। इस काल में लोकप्रिय थी परिखा यानी खाई और प्रकारों से युक्त गढ़ों की संरचना। इस प्रकार के गढ़ मल्हार, बछौद, कोटमी, सोनार में आज भी देखे जा सकते हैं।
2: इस युग के आहत सिक्के अकलतरा, ठठारी, आरंग, मल्हार, रायगढ़ तथा अनेक स्थलों से मिले हैं। मौर्यकालीन मिट्टी के बर्तन, मनके तथा खिलौने विभिन्न जगहों से प्राप्त होते हैं, जिससे मौर्यों का प्रभाव इस क्षेत्र में आभासित होता है। मौर्यकालीन अभिलेख मल्हार, सीमरसल और रामगढ़ में भी प्राप्त हुए हैं।
1: रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा हमारे देश की प्राचीनतम नाट्यशाला है। पास की जोगीमारा गुफा में नर्तकी सुतनुका और रूपदक्ष देवदीन के प्रणय का उल्लेख है।
2: महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णित रामगिरी पर्वत की पहचान कुछ विद्वान इसी पहाड़ी से करते हैं।

0: अभिलेखों की परंपरा में किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख हमारे देश में ज्ञात एकमात्र काष्ठ लेख है। ये दूसरी शती ईस्वी का लेख है तथा रायपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित है। मल्हार में ईस्वी पूर्व प्रथम द्वितीय शती की अभिलिखित विष्णु प्रतिमा मिली है, जो वैष्णव कला की प्राचीनतम प्रतिमा है।
1: छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम स्थलों में मल्हार विशेष उल्लेखनीय है। मौर्य काल से कलचुरी काल तक के पुरावशेषों की अविच्छिन्न परंपरा यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर अनेक राजाओं के सिक्के, मोहरे तथा मुद्रांक प्राप्त होते रहते हैं। मिट्टी के खिलौने और गुड़िया भी प्रचुरता से मिलती है।
0: मल्हार वैष्णव, शैव, बौद्ध तथा जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के स्थल संग्रहालय में शेषशायी विष्णु, वरेश्वर शिव, स्कंद माता, कुबेर, हेवज्र, अवलोकितेश्वर, तारा, अंबिका तथा तीर्थंकरों की प्रतिमाएं संग्रहित हैं।
1: यहाँ के प्रमुख मंदिरों में देउर मंदिर, पातालेश्वर तथा डिडनेश्वरी मंदिर उल्लेखनीय हैं। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी डिडनेश्वरी की प्रतिमा अंग सौंदर्य, अनुपातिकता, वस्त्रालंकरण की दृष्टि से कलचुरी कला की सर्वोत्तम नारी प्रतिमा है। लोक परंपरा में इसे देवी प्रतिमा माना जाता है।

0: मल्हार के पुरा वैभवों को प्रकाश में लाने के लिए स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्ण दत्त वाजपेयी का अमूल्य योगदान रहा है। उनके निर्देशन में मल्हार में सन 1975 से सन 1978 तक उत्खनन करवाया गया था।
1: छत्तीसगढ़ का एक अन्य कला केंद्र ताला भारतीय कला में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये बिलासपुर जिले में मनियारी नदी के तट पर बसा है। देवरानी जेठानी नामक दो भग्न मंदिरों के अवशेष यहाँ दर्शनीय हैं। जेठानी मंदिर प्रस्तर निर्मित दक्षिणाभिमुखी विलक्षण शिव मंदिर है। शैवाचार्यों का साधना पीठ रहा है ये। इस मंदिर में विशालकाय प्रतिमाएं जड़ी गई थी। स्तंभ अधिष्ठानों पर अंकित गणों की आकर्षक प्रतिमाएं गुप्त कला की याद दिलाती हैं।
0: देवरानी मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार दर्शकों को सम्मोहित करता है। इसकी कलात्मकता में अतींद्रिय अनुभूति है। इस पर पुष्प वल्लरियां, शिव पार्वती की चौसर क्रीड़ा, कीर्तिमुख और गंगा अवतरण सहित सिरदल पर गजाभिषेकित लक्ष्मी का अंकन है।
1: सन 1988 में यहीं से एक विशालकाय 9 फुट ऊंची अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा के निर्माण में शिल्पी की मौलिक कल्पना प्रस्फुटित हुई है। प्रतिमा के शिरोभाग पर नाग युग्मों की पगड़ी है। नासिका और भौं उतरती हुई छिपकली से निर्मित है। नेत्र गोलक अंडे के जैसे हैं। मत्स्य युग्मों से मूछें और कर्क से ठुड्डे निर्मित है। कान मयूराकृत हैं। वक्ष उदर तथा कटिस्थल पर मानव मुखों का अंकन है। अंगुलियां सर्पमुखी हैं। ऊर्ध्वाकार जननांग कच्छप से निर्मित है। दोनों घुटनों पर सिंहमुख तथा प्रभामंडल पर नागफण है। हमारे देश में इस प्रकार की ये एकमात्र कलाकृति है। शैव परंपरा से संबद्ध इस विलक्षण प्रतिमा के संबंध में प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय कला के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद चंद्र कहते हैं, प्रतिमा वैज्ञानिकों के लिए ये मूर्ति कम से कम एक शताब्दी तक चुनौती बनी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में शरबपुर नामक स्थान से राज्य करने वाले अनेक राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, किंतु अभी तक शरबपुर की खोज नहीं की जा सकी है। इस वंश के प्रसन्नमात्र नामक राजा ने विशिष्ट प्रकार की उभारदार ठप्पांकित स्वर्ण मुद्राएं राज्य में चलाई थी। ये मुद्राएं महेंद्रादित्य क्रमादित्य नामक राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं के अनुकरण में बनाई गई थी। इसी शैली की मुद्राएं

0: चैत्य आकृति, कीर्तिमुख और नकली झरोखे निर्मित हैं। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर जैसे ईंटों के मंदिर छत्तीसगढ़ में और भी मिलते हैं, जिनमें खरौद का शबरी और इंदलदेवर, पुजारीपाली का कैंटीन मंदिर, पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर और धुबनी का चित्तावरी मंदिर इस परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर कहते हैं,
1: पक्के ईंट, ईंटों की चिनाई की महीनता, राजगीरों की कला कुशलता को समेव प्रकट करने वाले प्रमाण माने गए हैं। इतनी चिनाई का यह मान समकालीन भारत में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता और बाद में भी भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता। सिरपुर में सोमवंशी युगीन दो मंदिरों का अस्तित्व है, एक राम मंदिर जो भग्न प्राय हो चला है और दूसरा लक्ष्मण देउल जिसका विमानांग शेष है। महामंडप समाप्त हो चुका है, परंतु इस महामंडप के छत को आधार देने वाले स्तंभों के पादपीठ आज भी विद्यमान हैं। बिल्कुल इसके अनुकरण में राजिम का राजीव लोचन मंदिर बनाया गया, रानीपुर झुराल का मंदिर बनाया गया और नरसिंहनाथ का पूर्ण रूपेण आज जो भग्न हो चला मंदिर है, जिसका केवल नींव हमको दिखाई पड़ता है, वह बनाया गया।
2: सिरपुर की कला में धार्मिक सौहार्द के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। महान चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में सिरपुर की यात्रा की थी। ये बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था, जहां आनंद प्रभु जैसे महान भिक्षु निवास करते थे। इनके निवास का स्थान आनंद प्रभु कुटी विहार कहलाया। इसके निकट ही स्वस्तिक एवं अनेक विहार निर्मित थे। इन विहारों में सैकड़ों महायानी भिक्षु निवास करते थे।
0: सिरपुर से तारा, मंजुश्री, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी और बुद्ध प्रतिमाएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जो भारतीय कला की अनुपम निधि हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन सिरपुर के निकट ही कहीं निवास करते थे। सिरपुर के शैव राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बौद्ध धर्म को भी उदार संरक्षण प्रदान किया था। इस राजा के कई ताम्रपत्र विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं।
2: सिरपुर के विलुप्त अवशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर एम जी दीक्षित को है, जिन्होंने यहाँ 1953 से 1956 तक पहला महत्वपूर्ण उत्खनन करवाया था।
0: राजिम दक्षिण कोसल का महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल और तीर्थ भी है। इस क्षेत्र में ये प्रयाग संगम के समान पवित्र माना जाता है। एक अभिलेख में इसे श्री संगम भी कहा गया है।
2: राजिम के दर्शनीय स्थलों में राजीव लोचन, कुलेश्वर महादेव और रामचंद्र मंदिर प्रमुख हैं। राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा विराजमान है। इसके अतिरिक्त वामन, त्रिविक्रम, योगासन, विष्णु आदि की प्रतिमाएं दक्षिण कोसल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रवेश द्वार तथा स्तंभों पर विविध अभिप्राय, अवतार, द्वारपाल, शाल भंजिकाएं तथा नदी देवियों का कलात्मक अंकन है।
0: इस मंदिर में परंपरा से क्षत्रिय पुजारी नियुक्त है। माघ पूर्णिमा में यहाँ बड़ा मेला लगता है। महानदी और पैरी के संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव का मंदिर अत्यंत प्रतिष्ठित है। श्री पुरुषोत्तम अनासक्त ने बताया,
3: इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। सुरक्षा के दृष्टि से उस पर और ध्यान दिया जाना जरूरी है, लेकिन यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही अलंकृत रूप में हैं। उसमें से भगवान कार्तिकेय की मूर्ति एक महादेवी की मूर्ति है। इसके अलंकरण को देखकर आश्चर्य होता है। यद्यपि इसकी स्थिति ऐसी है कि इसे और सुरक्षा की जरूरत है। राजिम मेला सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह माघ पूर्णिमा को लगा करता है। इस मेले के विषय में जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसका प्रारंभ कोई 1000 साल पहले

0: का था। उस समय महाराज जगतपाल देव, जिन्हें जगपाल महाराजा के नाम से भी लोग जानते हैं, वे यहाँ थे और उन्होंने भगवान राजीव लोचन की पूजा सर्वप्रथम शुरू की थी। उनकी पत्नी झलमलावती देवी ने इस कार्य को शुरू किया था। उन्होंने 1,25,000 दीपकों की आरती जलाकर भगवान की पूजा की थी। यह भगवान की प्रतिमा जो है वो राजीव बाई से प्राप्त हुई थी, ऐसी किंवदंती है, यद्यपि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो प्राप्त नहीं होता है।
1: छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा ने पहले तुम्मान को राजधानी बनाया। इस वंश के अभिलेखों में यहाँ के वंकेश्वर शिव का स्मरण बार बार किया जाता रहा है।
2: लगभग 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्मान से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। किंवदंतियों के अनुसार रतनपुर की अधिष्ठात्री देवी महामाया ने रत्नदेव को राजधानी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। रत्नदेव और उसके वंशजों ने यहाँ अनेक देवालय, उद्यान आदि का निर्माण करवाया। अभिलेखों में इसे अमरावती के समान मनोरम और रमणीय कहा गया है।
1: रतनपुर में प्राकार तथा परिखा युक्त गढ़, मराठा कालीन किला और आवासीय भवनों के भग्नावशेष बिखरे हुए हैं। कलचुरियों के ढलते पराक्रम को मराठों ने अपनी भुजाओं में समेट लिया। रतनपुर की दो अत्यंत कलात्मक कल्याण सुंदर शिव और विष्णु की प्रतिमाएं रायपुर संग्रहालय में संग्रहित हैं। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं,
3: किला द्वार के पास रावण सिर को काटकर शिव में जो अर्पित कर रहा है, यह मूर्ति देश में चर्चित है। इसके साथ ही साथ महामाया मंदिर, बूढ़ा महादेव मंदिर, राम टेकरी और पुराना रतनपुर का किला, भैरव मंदिर और आसपास के तालाबों के पास जो मूर्तियां हैं वह दर्शनीय हैं। सच तो यह है कि पुरातत्वीय दृष्टि से रतनपुर एक समृद्ध नगर रहा है और आज हम देखते हैं कि उसका वैभव जो है अभी भी खंडहरों में बोलता है।
2: रतनपुर के कलचुरियों के काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण होता रहा। इसमें मल्हार, जांजगीर, आरंग, शिवरी नारायण, पाली, सीपत, देवबालोद, खलारी, नारायणपुर, विजयपुर और बेलपान उल्लेखनीय हैं।
1: कलचुरी नरेशों की यशोगाथा के परिचायक, प्रस्तर लेख, ताम्रपत्र तथा सिक्के पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप कलचुरियों के शासनकाल में शैव और वैष्णव धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी पल्लवित होता रहा। इस काल की अनेक जैन प्रतिमाएं रतनपुर, मल्हार, धनपुर तथा आरंग में विद्यमान हैं। 15वीं शताब्दी में जहां देश में एक ओर जातीय कट्टरता तथा सामाजिक रूढ़िवादिता अपनी चरम सीमा में थी, वही छत्तीसगढ़ में राजा ब्रह्मदेव के शासनकाल में एक मोची देवपाल के द्वारा खल्लारी में भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया गया। मंदिर निर्माण को राजाज्ञा के साथ साथ सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त थी।
2: कलचुरियों के समकालीन इस क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों में बस्तर और कवर्धा के नागवंश तथा कांकेर के सोमवंश भी थे। कवर्धा के नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित भोरम देव मंदिर अपनी कला के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। बस्तर के नागवंशी राजाओं ने बारसूर, दंतेवाड़ा और नारायणपाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी संपूर्ण बस्तर की प्रमुख आराध्य देवी है।
1: विगत कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ अंचल के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों से अनेक नवीन कला केंद्र उद्घाटित हुए हैं। जानकारी देते हुए श्री G.L. रायकवार।
4: सरगुजा जिले में डीपाडी, कलचा भदवाही, सतमहला तथा हर्रा टोला प्रमुख है। अत्यधिक मात्रा में प्रतिमाएं, भग्न मंदिरों के अवशेष तथा इस क्षेत्र में तत्कालीन राजवंशों की नवीन जानकारियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से बस्तर जिले में गढ़धनुरा नामक स्थल पर मलवा सफाई से अनेक मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और एक अन्य स्थल तो अत्यधिक उल्लेखनीय है। यह स्थल है भोंगापाल। इस स्थल से हमें 7वीं-8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में प्रचलित बौद्ध धर्म के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हुई है। भोंगापाल में बौद्ध प्रतिमा के साथ हमें बौद्ध विहार भी प्राप्त हुए हैं।
2: छत्तीसगढ़ की उर्वर भूमि एक और पुरातत्वीय दृष्टि से समृद्ध है, वहीं अनेक संतों की भी भूमि है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक एवं शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म राजिम के निकट चंपारण्य में हुआ था। जानकारी देते हुए चंपारण ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री कृष्णदास एम आधिया ने बताया,
5: जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का ये प्राकट्य स्थान है। संवत वर्ष 1535 में चंपारण के इस वन में उनका प्रागट्य हुआ था। आज उसको 514 साल पूरा हुआ है। जिस स्थान में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ था उसी स्थान में ही अभी मंदिर है, जो 3 करोड़ रुपया के खर्च से अभी उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और प्रतिवर्ष चैत्र महीना में बड़ा भारी मेला भरा जाता है। विकास योजना में तो काफी बातों को समावेश हुआ है, जहाँ पुस्तकालय और चित्रकला, इस संप्रदाय और सारा ये धार्मिक संप्रदाय के बारे में जितनी चित्रकला उपस्थित है उसका एक म्यूजियम बन रहा है, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो रही है।
2: कबीरपंथियों की एक प्रमुख शाखा दामाखेड़ा में स्थित है। छत्तीसगढ़ सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास की भी कर्मभूमि रही है। गिरौदपुरी और भंडारपुरी सतनामियों के पवित्र स्थल हैं।
1: छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का प्रारंभिक सर्वेक्षण ब्रिटिश अधिकारी और पुराविद मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसके पश्चात राय बहादुर हीरालाल, डॉक्टर वी वी मिराशी तथा पंडित लोचन प्रसाद पांडेय के अथक प्रयासों ने इस क्षेत्र की कला को भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व जगत में प्रतिष्ठित किया।

छत्तीसगढ़ में पुरातत्व, ये रूपक अभी आप सुन रहे थे। आलेख था डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम का। वाचक स्वर थे राकेश नैयर और झरना शर्मा के। प्रस्तुतकर्ता थे इला शंकर गुहा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 2 बजे हैं, समय है चित्रपट संगीत का। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से। आवाज रेमो फर्नांडिस की है। महबूब ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है ए आर रहमान ने।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ।

0: आकाशवाणी रायपुर
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत का सफर। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एमजी श्री कुमार की आवाजों में दिल से फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है ए आर रहमान ने।

0: अभिजीत चक्रवर्ती और साथियों की आवाज़ में अभी आप राजा बाबू फिल्म का गीत सुन रहे थे और इसी के साथ चित्रपट संगीत समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 2:15 होने को हैं दोपहर समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
5: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की

0: स्वागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। पहले गीत के लिए आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की। गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का। फिल्म का नाम है मासूम।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05।

अभिजीत की आवाज में आइए सुनते हैं आनंद राज आनंद की रचना। संगीत अनु मलिक का है। फिल्म का नाम है कृष्णा।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लग हलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत।

उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना मोहरा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया था विजू शाह ने। लीजिए सुनते हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में बाबू मान की रचना। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है। फिल्म का नाम है चलते चलते।

0: अभी आप सुन रहे थे दाग द फायर, इस फिल्म का गीत। आवाजें थी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। समीर ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी है।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की और दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत ने वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। अफगानिस्तान के कुनार खोस और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. President Draupadi Murmu has congratulated Prime Minister Narendra Modi on serving as the longest continuously elected Prime Minister of the country. In a social media post, the President said that this landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in his leadership by the people of the country. She highlighted that his tenure has been distinguished by far-reaching advancements across governance, economic resilience, and social transformation. She said of the many initiatives undertaken under his leadership, PM Janman and Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan hold a special place in her heart. The President said, Mr. Modi's inspiring journey continues to instill hope and renewed confidence in India's strong democratic traditions. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections.
4: Global situation ka fayda utha ke
5: taking advantage of the current global situation, some individuals have attempted to create artificial shortages. However, I would like to clarify there is no shortage of CNG or piped natural gas. In fact, efforts are underway to reduce dependence on LPG by promoting the wider use of PNG.
4: Convert kar rahe into PNG connection.
3: Trinamool Congress MP Sushmita Dev has resigned as a member of the Rajya Sabha. She has sent the resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. After her resignation, she met Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma in New Delhi. Earlier, veteran Trinamool leader and Rajya Sabha member Sukhendu Sekhar Ray had resigned from both Rajya Sabha and the party. The government has refuted several social media posts falsely claiming that the RBI will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from the 30th of this month. Fact-check unit of the Press Information Bureau has termed the claim as fake. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. At least 13 people, mostly children, were killed in a Pakistani military airstrikes in Afghanistan's Kunar, Khosht and Paktika provinces. In a statement, Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid condemned the attack and said that the attack targeting civilian homes took place yesterday night. He said the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and called it a humanitarian crime and act of aggression. The latest incident comes amid escalating tensions between Pakistan and Afghanistan over the past few months, with repeated exchanges of fire and growing concerns over civilian casualties. The IMD has said that Delhi NCR is expected to experience significant weather changes over the next 3 days, with thunderstorms, dust storms and rainfall likely to bring much needed relief from the scorching temperatures. India have suffered yet another blow to their ODI squad ahead of the 3-match ODI series against Afghanistan. After Virat Kohli, Hardik Pandya has been ruled out of the series, which is set to begin India's preparations for the 2027 ODI World Cup to be held in South Africa. And that is the end of this news bulletin.

3:10 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह वक्त होता है मन भावन का, जब आप भेजते हैं अपने संदेश, अपने ईमेल्स और साथ में भेजते हैं अपनी फरमाइशें। तो जहां पर आपको अपनी फरमाइशें भेजनी है उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। और मनभावन लेकर आपके साथ मैं हूँ रजनी। और फिलहाल कौन है हमारे साथ, हमारे श्रोता जिन्होंने सबसे पहले अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, ये है कविता और दिग्दर्शन मेरठ से, और ये सुनना चाहते हैं एक गीत फिल्म जंजीर से। तो आइए कविता और दिग्दर्शन की फरमाइश पर ये गीत से शुरुआत करते हैं मन भावन की। आवाज़ है मन्ना डे की।

नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती और सूफिया नवाब ने हमें संदेश भेजा है बल्ली मारान से। इनके अलावा हमें सुन रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतका खोरवाल और भानु प्रकाश। साथ ही हमें संदेश भेजा है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। अगला संदेश भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से इनका संदेश मिला और अगला पैगाम सनावत से मिला है शेख मूसा मोहसिन का। और इनके अलावा मनकारा मंदिर बीटीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने एक साथ संदेश भेजा है। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह ने ये पैगाम भेजा। और अगला संदेश गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से मिला है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे का। और ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी का गीत, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।

चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा ने हमें संदेश भेजा। इनके अलावा स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें पैगाम मिला हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया का। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती कंचन, कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी हमें सुन रहे हैं। इनके बाद जो पैगाम मिला है हमें ये है मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल का। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान। और इनके बाद हमें संदेश मिला है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। और ये सुनना चाहते हैं सुहाग फिल्म का एक गीत, तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

संबलपुर कांकेर से हमें सुन रहे हैं फागु राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इनके बाद हमें संदेश मिला है खंडवा रोड सनावत से शहबाज अरबाज, फरहाज फरदीन, समीर और डॉक्टर मुइन शेख का। और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया हमें सुन रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश भेजने वाले हैं राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, गांव फ्रांसी हिसार से। और गांव नथाना पंजाब से हमें सुन रहे हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। इनके अलावा हमें संदेश मिला है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का, सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें संदेश भेजा। अगला पैगाम हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का। और ये सुनना चाहते हैं ममता फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो? अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मनभावन का आधा सफर लगभग हम पूरा कर चुके हैं। इस ब्रेक के बाद जारी है मनभावन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां पर आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें अपने संदेशों और अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप संदेश कर सकते हैं, ये है 9868868753 और हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। अगला संदेश हम तक पहुंचा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा सुन रहे हैं हमको। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। अगला संदेश हम तक पहुंचा है महिंद्रा वर्क कैलाश का, कहां से भेज रहे हैं ये संदेश ये हमें नहीं समझ में आया है। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन का सुंदर नगर भिलाईगढ़ से। साथ ही हमें संदेश मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का। और साथ ही संदेश हमें भेज रहे हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा उत्तर मध्य प्रदेश से। और शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से श्रीमती कमला देवी महोबिया ने हमें संदेश भेजा। और शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े, छकुली ताई खोबरखेड़े और खंडवी बुल्ढाणा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े और थिलोरी अमरावती से सुनेना पवन भोंडे ने हमें संदेश भेजा। और राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार ने संदेश भेजा है और ये तीनों सुनना चाहते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत। ये गीत बहुत ही सुंदर है लता मंगेशकर की आवाज़ में, लेकिन सुनाई कम देता है, कम सुनने में आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए यही गीत आप तक पहुंचाते हैं फिल्म भूत बंगला से।

आपके जो संदेशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और हम कोशिश तो यही करते हैं कि आपके सभी संदेश हम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें आपकी पूरी कर पाएं। फिलहाल जो संदेश मुझे दिख रहा है ये है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना सामना, राबिया परी, आशु जूही, सदफ, आरजू बागवान और समस्त बागवान परिवार बागवान मंजिल छोटी बलिया से हमें संदेश भेज रहे हैं। और मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से और छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा ने संदेश भेजा है। ऊपरकोट मोहल्ला चुखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह।

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

भंवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा और जगदीश देवांगन हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ ने, साथ में कमल साहनी भी हैं, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश ने हमें संदेश भेजा है। और इनके अलावा जो संदेश हमारे पास आया है ये है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान गंज डुंडवारा से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल और माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ठेकरे, वर्षा ठेकरे और श्रद्धा ठेकरे ने हमें संदेश भेजा है। इनके अलावा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का पैगाम मिला। और भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रंजीत देवांगन, धर्मेंद्र देवांगन और राजेंद्र देवांगन ने संदेश भेजा। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहेकर ने। और ये सभी सुनना चाहते हैं जंगली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो लीजिए, आपकी पसंद पर पहुंच रहा है ये गीत फिल्म जंगली से।

चलते चलते कुछ और संदेश जो हम तक पहुंचे। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके अलावा पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह और मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने हमें संदेश भेजा है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा और यशस्वी वर्मा का संदेश हमें मिला। और इनके अलावा धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारी कोशिश तो पूरी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फरमाइशें पूरी कर पाएं, लेकिन वक्त का तकाजा है, सारे संदेश सबकी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाई होंगी शायद, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए क्योंकि आपके संदेश तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे संदेश हम शामिल करें। फिलहाल मनभावन से रजनी को इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की राष्ट्र की निरंतर सेवा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शन को PNG कनेक्शन में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मूज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मूज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सेरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की ओर दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमरीका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मूज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए गए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएंगी। ये डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक में उत्पादों और AI क्षमता को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometre long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalisation of Phase 2A, the Ahmedabad-Gandhinagar will have over 77 kilometres of active metro rail network. He said the Cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. A meeting of the National Democratic Alliance NDA will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories besides the leaders of all alliance constituents. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fiber, MMF apparels, MMF fabrics and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System or GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas CNG in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections. Several leading international human rights organizations have strongly criticized the Pakistani authorities for a violent crackdown on peaceful protest in Pakistan-occupied Kashmir. The group cited an internet shutdown, mass arbitrary arrest and the use of deadly force, describing the situation as a serious deterioration of human rights in the region. The International Human Rights Foundation condemned the decision to label a civil society organization as a terrorist group on unclear grounds, calling it a violation of freedom of association. American and Iranian forces have traded military strikes in a sharp overnight escalation that has pushed the region's fragile truce to its limits. U.S. Central Command confirmed its forces completed self-defense strikes against Iran on June 9 at the direction of President Donald Trump in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter near the Strait of Hormuz the previous day. Trump said both crew members were safe and uninjured, but stressed the United States had to respond. Benchmark domestic equity indices ended on a mixed note today. The Sensex rose 64 points to close at 73,983, while the Nifty dropped 27 points to settle at 23,215. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index shed 1.5% and Small-Cap 100 Index fell over 1.3%. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। लता मंगेशकर की आवाज में आए आपको सुनवाते हैं ये लोकप्रिय गीत। फिल्म का नाम है अनुराग।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बेटी बेटे फिल्म से अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: nation's age limit, physical standards, and other requirements. Detailed information regarding the recruitment process, reservation policies, and important dates and application procedure is available on the website www.iiim.res.in. The Transnational Health Science and Technology Institute, an institute of national importance under the Biotechnology Research and Innovation Council, has announced recruitment for one post of senior manager. The position carries pay level 13 as per the 7 CPC and is available through direct recruitment as well as on deputation. Candidates should possess a graduate degree along with postgraduate qualification in human resources, finance, CA, ICWA, or an equivalent discipline, coupled with substantial administrative and managerial experience. The last date for submission of online applications is 20th June 2026. For details, do refer to the website at www.thsti.res.in. I repeat the website, it is www.thsti.res.in. The Ministry of Railways has invited applications for the post of a Managing Director of National High Speed Rail Corporation Limited, the special purpose company responsible for implementing the landmark Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail project. This senior leadership position involves overseeing planning, execution, financial management, stakeholder coordination, and operational readiness of India's first high speed rail corridor. Eligible officers with extensive experience in infrastructure, transportation, project management, or public sector administration may apply through proper channel. The last date for receipt of applications is 11th June 2026. For details, do refer to the website, that is at www.cict.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए एनसीबी काडर उप प्रबंधक कुल पद 14, एनसीबी काडर पदधारी प्रबंधक कुल पद 8, एनसीबी काडर समूह प्रबंधक कुल पद 1, काडर कार्यालय सहायक कुल पद 1, एनसीबी काडर पदधारी हिंदी सहायक 1 पद और एनसीबी काडर पदधारी प्रशासन सहायक 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thsti.res.in। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर एक सलाहकार आईटी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, एसटीए जल प्रबंधन, एसटीए वानिकी, एसटीए जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, एसटीए कृषि एवं बागवानी तथा एसटीए पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, 8वीं मंजिल, प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार करिश्मा, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर विद अस टुडे फॉर दिस न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। एंड वी बोथ, माई सेल्फ रेनू कटारिया एंड माई को होस्ट करिश्मा, वेलकम ईच एंड एवरी वन। But before we begin with all our segments and dateline, let's begin with the news headline at this hour, Karishma.
4: जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया।
5: Union Cabinet clears development projects worth more than 4,700 crore rupees, including extension of Ahmedabad Metro and government office and residential complexes in Amravati.
4: प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी।
5: Iran carries out attacks against US bases in Jordan and other targets in Gulf. US responds with strikes on Iranian targets.
4: अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत।
5: And Met Department predicts significant weather changes in Delhi NCR region in the next 3 days, likely to bring relief from scorching heat. And listeners and Karishma, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about infrastructure at the core of India's development.

0: Now, infrastructure plays a huge role in shaping our daily lives.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और अब जरा सोचिए, सड़कें, रेलवे, घर, पानी की सप्लाई के सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क और साफ ऊर्जा वाले प्रोजेक्ट, ये सिर्फ ढांचे नहीं हैं, ये वे आधार हैं जो लोगों को जरूरी सेवाएं और मौके पाने में मदद करते हैं.
0: एंड दे इन्फ्लुएंस सो मच करिश्मा टू आर इन आर डेली लाइव्स. इट इज मोर देन वी कैन ऑफन रियलाइज. बेटर रोड्स कैन रिड्यूस ट्रैवल टाइम, रिलायबल इंटरनेट कैन कनेक्ट रिमोट communities, and improved transport systems can boost trade and economic activities.
1: बिल्कुल सही. और असल में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लाखों लोगों के लिए पहुंच और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.
0: And now there is a very interesting question that we have for our listeners here. Have you ever noticed how different infrastructure projects seem to connect with one another today?
1: आपका मतलब है कि कैसे कोई हाईवे रेलवे स्टेशन से जुड़ सकता है जो आगे चलकर एयरपोर्ट या लॉजिस्टिक्स हब से जुड़ता है.
0: वेरी ट्रू, एग्जैक्टली. एंड दैट्स वेयर अ मेजर चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्स इनटू द पिक्चर.
1: और 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़े पैमाने एकीकरण और लंबे समय की क्षमता बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया.
0: अर्लियर डियर लिसनर्स, मेनी प्रोजेक्ट्स वर ऑफन एग्जीक्यूटेड सेपरेटली. वन डिपार्टमेंट वुड बिल्ड अ रोड, अनदर वुड वर्क ऑन रेलवेज, एंड प्लानिंग वाज समटाइम्स कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली.
1: लेकिन समय के साथ नजरिए में बदलाव आया. प्रोजेक्ट को अलग अलग प्रयासों के तौर पर देखने के बजाय ध्यान इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग पर केंद्रित हो गया.
0: एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज एंड सर्विसेज आर प्लान्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, सो दे वर्क टुगेदर मोर एफिशिएंटली. यहाँ पर टीम वर्क कितना काम आता है.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने. और इससे लोगों और सामान की आवाजाही आसान हो सकती है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, और भविष्य की ग्रोथ के लिए मजबूत आधार भी मिल सकता है.
0: एंड करिश्मा, दिस इज लाइक यू नो अ बिट लाइक असेंबलिंग अ पजल. ईच पीस इज सो इम्पोर्टेंट ऑन इट्स ओन, बट द रियल इम्पैक्ट इज सीन व्हेन ऑल द पीसेस फिट टुगेदर लेटर ऑन.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ एसेट्स बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे नेटवर्क बनाना है जो लंबे समय तक समुदायों, व्यवसायों और आर्थिक विकास को सहारा दे सके.
0: एंड एज दीज नेटवर्क्स एक्सपैंड एंड बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हाउ पीपल ट्रैवल, कम्युनिकेट, एक्सेस सर्विसेज एंड पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी.
1: और सागरमाला, भारतमाला, पीएम गतिशक्ति, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना और उड़ान जैसे कई कार्यक्रमों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को काफी बढ़ाया है. इन पहलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को परिवारों की भलाई, आर्थिक अवसरों और क्षेत्रीय विकास से भी जोड़ दिया है.
0: And let's talk about something that millions of Indians use every day, that is the Indian Railways.
1: बिल्कुल सही कहा. और रोजाना सफर करने वाले और छात्रों से लेकर परिवारों और व्यवसायों तक रेलवे ने सचमुच देश की जीवन रेखा बदल दी.
0: एंड वी हैव सीन ओवर द पास्ट डेकेड करिश्मा दैट इंडियन रेलवे स्पेसिफिकली हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंजेस एम्ड एट इम्प्रूविंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड पैसेंजर सर्विसेज.
1: और एक दिलचस्प बात श्रोताओं ये भी है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित धनराशि में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिनमें देखा जाए तो 2014-15 में बजटीय सहायता लगभग 32,000 करोड़ रुपए थी.
0: एंड टुडे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इट हैज रिजन टू अप्रोक्सीमेटली 2.78 लाख करोड़ रुपीज.
1: और ये भी सोचिए पहले की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा निवेश हुआ है.
0: सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट्स, द वंदे भारत ट्रेन्स. क्या आपने उससे सफर किया है?
1: बिल्कुल, मैंने सफर किया है और बहुत सारे श्रोताओं ने भी किया होगा.
0: बिल्कुल.
1: और आपने शायद उन्हें देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा. ये भारत की अपनी यानी कि देश में बनी हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, जिन्हें ज्यादातर आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है.
0: वेरी ट्रू करिश्मा. विद इम्प्रूव्ड स्पीड, कंफर्टेबल सीटिंग एंड एडवांस्ड ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजी, वंदे भारत ट्रेन्स आर चेंजिंग द वे पीपल ट्रैवल बाय रेल.
1: बिल्कुल. और उनकी मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है. अप्रैल 2026 तक देश भर में 162 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही हैं.
0: एंड इजंट दैट इंप्रेसिव. नाउ स्पीकिंग ऑफ स्पीड, इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग इवन बिगर, the Mumbai Ahmedabad

0: हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
1: और अक्सर देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहे जाने वाले इस कॉरिडोर का काम अभी भी चल रहा है और भारत में हाई स्पीड रेल यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम है।
0: इमेजिन लिसनर्स ट्रैवलिंग बिटवीन मेजर सिटीज इन मच लेस टाइम दैन बिफोर, दैट्स द विजन बिहाइंड हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर।
1: लेकिन आधुनिकीकरण सिर्फ ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है। 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है।
0: वेरी ट्रू। एंड नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम रेल्स, लेट्स टॉक अबाउट रोड्स। रोड्स आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल पार्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस देम एवरी डे।
1: और पिछले कुछ वर्षों में भारत का सड़क नेटवर्क काफी बढ़ा है, जिसमें गांवों, कस्बों, शहरों और प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
0: इनफैक्ट विद अ रोड नेटवर्क ऑफ अबाउट 63.73 लाख किलोमीटर्स, इंडिया टुडे हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड।
1: और इस परिवर्तन में दो महत्वपूर्ण पहलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भारतमाला परियोजना।
0: सो द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क इजंट जस्ट अबाउट बिल्डिंग रोड्स, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज क्लोजर टुगेदर।
1: बिल्कुल। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल जोजिला टनल के मुख्य हिस्से के आर पार होने के लिए आखिरी धमाका किया। उन्होंने इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
0: The breakthrough connected both ends of the 13.15 kilometer main tunnel being constructed on National Highway 1 between Baltal in Kashmir and Minamarg in Dras in Kargil district of Ladakh. Nitin Gadkari pressed the remote detonator at the east portal near Minamarg, marking a major engineering milestone in one of India's most ambitious infrastructure projects. Dear listeners, we have a report for you.
2: Being constructed at an altitude of 11,578 feet above sea level, the Zojila Tunnel is set to become Asia's longest bidirectional road tunnel upon completion. The project includes the main tunnel, an escape tunnel, three vertical ventilation shafts and nearly 18 kilometers of approach roads. The total project cost is estimated at ₹6,809 crores. Speaking after the ceremony, Union Minister Nitin Gadkari said this tunnel would provide all-weather connectivity between Srinagar and Leh, ending Ladakh's winter isolation, adding that it will boost strategic mobility, tourism and the local economy.
3: ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।
2: ऑफिशियल सेड मोर देन 75% ऑफ द फिजिकल वर्क हैज बीन कंप्लीटेड फॉलोइंग द ब्रेक थ्रू। टनल लाइनिंग, रोड पेवमेंट एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस विल बी एक्सपेडाइटेड। द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड फॉर कमीशनिंग बाय February 2028। वंस ऑपरेशनल, the tunnel is expected to reduce travel time across the Zojila Pass from more than 3 hours to around 15 minutes while bypassing snowbound and accident-prone stretches of the highway. The project is also expected to ensure year-round movement of defense personnel, essential supplies and tourists between Kashmir and Ladakh. Local leaders from Kargil and Gandharbal in central Kashmir have hailed the breakthrough as a landmark achievement and described the tunnel as a lifeline for Ladakh that will transform connectivity, economic activity and access to essential services in the region. For Parikrama, Tariq Ratra, Akashwani News, Srinagar.
1: और श्रोताओं, सिविल एविएशन की बात करें तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2026 में 165 हो गई।
0: The Udaan Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme launched in 2016 improved affordability and access to air travel for wider sections.
1: Aur iske saath hi pichle 12 varshon mein Bharat ke infrastructure ke safar ne alag alag sector mein vikas ke paimane aur raftaar ko badal diya. Highway, railway, bandargah aur airport logo saman aur sevaon ki tezi se aawajahi mein madad karte hain.
0: So to conclude listeners and Karishma, the urban and rural infrastructure has also witnessed deeper integration with technology and public service delivery. Large scale investments have created new economic corridors, manufacturing hubs, logistics networks and digital ecosystems across the country. And these foundations continue to support India's journey towards Viksit Bharat 2047, jo ki hamara aim hai. Everything is related to Viksit Bharat 2047.

0: Karnad was conferred the Padma Shri and the Padma Bhushan by the Government of India and won 4 Filmfare Awards, of which 3 are Filmfare Awards for Best Director, Kannada, and a 4th for Filmfare Best Screenplay Award. And here, dear listeners, the dialogue that we are going to listen to is a memorable scene of Girish Karnad from the movie Sur Sangam, where he takes on a group of young people and gives them a demonstration on music and discusses Indian classical and pop music.
1: Hereafter, please don't be silly, stupid and childish. Sangeet Bhagwan ki deen hai, chahe Bharatiya ho, chahe Pashchimi. Wo bhasha ka bhed nahi janta, apne aur paraye mein fark nahi manta. Amrut ki dhara hai sangeet, jo na kabhi tootti hai, na sookti hai. Wo har pyaase ki pyaas bujhati hai, har hruday mein anand jagati hai. Kaun hote hain hum jo fatwa de, ki wo sangeet uncha hai, aur ye sangeet ucha hai. अपनी पुरानी परंपरा और संगीत में उसकी परछाई को बगैर देखे बगैर समझे उसका अपमान करना मूर्खता है। एक तरफ वो विदेशी लोग हैं आपके बीटल्स जैसे, जो भारतीय संगीत को महान मानते हैं और इस देश में आकर श्रद्धा के साथ ओंकारनाथ की उपासना करते हैं, और एक तरफ आप लोग हैं इसी देश की संतान, जो अपने ही देश के संगीत को घटिया मानते हैं, उसका अपमान करते हैं। आप अपने मुंह से अपनी माता की निंदा करते हैं, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है और इस अपराध के लिए क्षमा भी नहीं है।
2: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज रूप कुमार राठौर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक, गजल और सूफी गायक हैं, उनकी जन्मतिथि है। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित कलाकार थे। रूप कुमार राठौर ने अपने संगीत सफर की शुरुआत तबला वादन से की, लेकिन बाद में अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज के बल पर उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई। फिल्म बॉर्डर का लोकप्रिय गीत संदेशे आते हैं आज भी उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।

0: And today we are paying tributes to Omkar Nath Dhar, better known by his stage name Jeevan, who was an Indian actor. He played the role of Narad Muni in films of the 1950s, a total of 59 times. And later, he played the role of popular villains. And here we are going to listen to one of his best superhit dialogues.
1: जब मेरे पिताजी ने राजपाट छीनकर मुझे दरबदर कर दिया था, उस सब पाप का एहसास किसी को हुआ था? अब मेरा बेटा राजकुमार बनेगा और ये नवाब ज्यादा उसकी गुलामी करेगा।
2: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, नवापारा, फुलवार, शिवपुर, चिनिया, नीलकंठपुर, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, अखोरा, जवाखांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टान पारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये लुटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलिया भाटा, भेलवाटार, सर्दूकला, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी, कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 71 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:25 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवावाणी कार्यक्रम में आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस। सुनिएगा पत्र मिला और युगल गीत। सुगम संगीत शाम 6:30 पर कलाकार होंगे नमन दत्त और साथी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे पीटी उल्लास कुमार। चौपाल शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा धान के नर्सरी रोपाई प्रबंधन। आप सुनेंगे चिट्ठी मिलीस। आज की सलाह में पीपीआर बीमारी माने भेड़ बकरी में होने वाला प्लेग रोग कारण लक्षण और बचाव। इस विषय पर डॉक्टर संजीव राय अतिरिक्त उप संचालक जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर देंगी जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा सुलोचना बृहस्पति का गाया राग कौसी कानड़ा में ख्याल। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर और रात 10:00। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स कल दोपहर 4:00, स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर। बाल वाटिका कल सुबह 8:30 पर। बेरा की बात का विषय होगा शिक्षा के संग खेल कूद शारीरिक और मानसिक विकास पर जरूरी। होनहार संगवारी में बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहूले अंजू मिश्राम के गोठ बात सुनिएगा और आप सुनेंगे प्रश्नोत्तरी और बाल गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे राम शरण वैष्णव और साथी। इसी कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर कलाकार होंगे शिवदयाल पटपरिहा और साथी। स्वरधारा कार्यक्रम कल सुबह 10:00, कलाकार होंगे जगजीत सिंह और मिनल जैन। ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये कार्यक्रम कल सुबह 11:05 पर।

सुधा कार्यक्रम कल दोपहर 12:30 पर सुनिएगा। हल्बी गीत कलाकार होंगे लच्छिंदर सलाम और साथी, और आप सुनेंगे कमार गीत कलाकार होंगे मनारी बाई और साथी। बिंदिया कार्यक्रम कल दोपहर 1:30 पर आज की बात का विषय होगा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए खेलकूद, और सुनिएगा फोन इन फरमाइश हेलो बिंदिया। कल शाम 5:10 पर युवाणी कार्यक्रम में अपन गोठ का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। पौना जोहार में लोक गायक शेख अमीन ले नीलेश साहू और लिनिमा साहू ले गोट बात आप सुनेंगे, और सुनिएगा हमर गांव। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम साइंस एंड टेक कल रात 9:25 पर, और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। डॉक्टर
1: कुमार विश्वास की इन पंक्तियों के संग आज की शाम में अनेक यादों को सजाने के लिए ढेर सारी बातें करने हम आ गए हैं आपके दो रेडियो दोस्त। मैं अपेक्षा शुक्ला
0: और मैं हूँ आपका दोस्त आरव शुक्ला।
1: तो स्वीकारे आप हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। अपेक्षा, दुनिया बहुत ही सुंदर है जिसके खूबसूरत नज़ारों को हम अपनी आँखों से निहारते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो इन नज़ारों को देखने से वंचित हैं। अगर हम चाहें तो इनकी जीवन में भी एक नया सवेरा ला सकते हैं। ज़रूरत है इनकी आँखों में नई रोशनी की।
1: बिल्कुल, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के जीवन को रोशन करने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है नेत्रदान दिवस, और सभी को इस कार्य का महत्व भी बताते हैं।
0: दोस्तों, बहुत सी भ्रांतियां हैं इस विषय में, पर पुण्य कार्य से बड़ा और कोई कार्य नहीं होता, तो आइए इस पहल का हिस्सा बने
1: और मृत्यु उपरांत अपने नेत्र किसी जरूरतमंद को दान में दें।
0: अपेक्षा, हम बात कर रहे हैं नेत्रदान और नेत्रों की। हमारी आँखें देश ही नहीं विदेश के भी सुंदर कृतियों की सभ्यताओं और संस्कृति को निहारने को आतुर रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और अपेक्षा, एक बात बताओ, जो लोग बाहर विदेश में रहते हैं और जो यहाँ हमारे बाहर विदेश से हमारे देश में आते हैं, उन्हें अपने देश और अपनी संस्कृति की याद नहीं आती होगी?
1: बिल्कुल आरव, बिल्कुल आती होगी, और क्यों ना आए भला, आखिर सबकी अपनी संस्कृति और धरोहर, उनकी अपनी पहचान जो होती है।
0: जी हाँ अपेक्षा, पर ये बताओ कि हमारे देश के लोग बाहर विदेश में और बाहर के लोग यहाँ हमारे देश में सहज कैसे हो पाते हैं?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आरव तुमने, और बात भी बिल्कुल सही है तुम्हारी।
0: हाँ हाँ, तो बताओ भी आखिर विभिन्न देश के लोग अपनी संस्कृति में एक दूसरे की संस्कृति में कैसे घुल मिल जाते हैं?
1: अरे आरव, तुम्हें नहीं पता क्या, इन सभी चीज़ों के लिए ही यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक विशेष दिवस मनाया जाता है।
0: अच्छा हाँ, सही याद दिलाया अपेक्षा तुमने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक शांति, सहिष्णुता और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही समझा है आरव तुमने। और पता है दोस्तों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच अविश्वास दूर करना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी संस्कृतियों को एक मंच पर लाना है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस सर्वप्रथम 2001 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र के पहल में मनाया गया था, पर 2024 में चीन के विशेष पहल से इसे एक बड़ा स्तर और निर्धारित दिनांक प्राप्त

0: प्राप्त हुआ जो है 10 जून यानी आज का।
1: बिल्कुल, और साथियों इस दिवस को मनाने का तरीका बेहद रचनात्मक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक भी होता है। बिल्कुल दोस्तों, इस दिन विभिन्न कला और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से संवाद, दर्शन और आध्यात्मिकता से जुड़े आयोजन और आधुनिक दौर में वैज्ञानिक प्रगति और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
0: और दोस्तों इस आयोजन में विशेष रूप से युवा शोधकर्ता, छात्र, सांस्कृतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न देशों के राजदूत और सांस्कृतिक मंत्री शामिल होकर इसे विशेष बनाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसमें भाग लेने के लिए विशेष रूप से यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर इस दिवस के उपलक्ष्य में हर साल निबंध प्रतियोगिताएं, फोटोग्राफी कंटेस्टेंट और यूथ फोरम के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। इसमें कोई भी योग्य युवा शोधकर्ता ऑनलाइन अप्लाई करके वैश्विक मंच पर हिस्सा बन सकता है।
0: तो आइए दोस्तों, हम सब वादा करें कि हम हमेशा अपने संग संग दूसरों की सांस्कृतिक मूल्यों का भी सम्मान करेंगे।
1: बिल्कुल, और हम सभी के साथ आदर और सरलता से रहेंगे, क्योंकि हमारा देश हमें वासुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: साथियों, आज है बुधवार और आज है आप सबका पसंदीदा क्रम, क्रम पत्र मिला। तो शुरू करते हैं क्रम पत्र मिला।

तो आरव, ये जो पहला पत्र आया है इसे भेजा है सिमगा से लव कुश और प्रहलाद सेन ने। ये लिखते हैं 31 मई की युवाणी के लिए। 31 मई को प्रसारित युवाणी की महकती बगिया में संस्कार और

0: परीक्षा की चर्चा को आजकल में श्रोताओं को नम्रता के गुण, मर्यादा और अमृतमयी वाणी को अपनी सुमधुर वाणी से अपेक्षा शुक्ला लेकर आई। निराशा से बचने, अपने जीवन को सफल बनाने और अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाने के लिए अपेक्षा शुक्ला और संस्कार जैन ने कुछ बातों पर ध्यान देने को कहा। कठिनाइयों से डरना नहीं है और हर कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है, ये इनके विचार थे।
1: बिल्कुल अपेक्षा, इन्होंने पत्र में बहुत प्रेरक बातें लिखी हैं। कठिनाइयों से हमें डरना नहीं चाहिए, ये कठिनाइयाँ जीवन में अलग अलग रूपों में आती हैं, खासकर युवाओं के जीवन में अध्ययन के समय और रोजगार प्राप्ति के समय कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे युवाओं को उन सफल युवाओं के जीवन के हिस्सों को पढ़ना चाहिए जिनका जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ और उन कठिन परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसका उदाहरण है विगत दिनों यूपीएससी की परीक्षा में सफल देश के वो युवा जो बहुत साधारण परिवेश से आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पत्र भेजने के लिए आपका धन्यवाद।
0: ये जो अगला पत्र है ये आया है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा का। ये लिखते हैं, 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर कंपियर साथी की चर्चा पसंद आई। वाकई साइकिल के उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। मुझे याद है पहले ग्रामीण क्षेत्र में जिस घर के सामने साइकिल खड़ी होती थी वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत और सम्माननीय माना जाता था। और आरव, इनकी शिकायत है कि पिछले कार्यक्रम में इनका पत्र शामिल नहीं हुआ है।
1: अच्छा, तो अपेक्षा सबसे पहले इनकी शिकायत हम दूर कर देते हैं। किसी भी श्रोता का पत्र बस हम तक पहुंचना चाहिए दोस्तों, अब वो अवश्य शामिल होता है। जैसे कि आपका ये पत्र हमें मिला है, हमारे लिए सभी श्रोता समान हैं। रही बात साइकिल सवारी की, तो आज विश्व के कई देशों में लोग फिर से साइकिल को अपना रहे हैं। हम भी इसे अपनाकर अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, अपना धन बचा सकते हैं और अपने वातावरण को और वायु को प्रदूषण से बचा सकते हैं। दोस्तों, पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इसी दिन के लिए हमें महासमुंद से भी रोशनी और छाया दीवान ने भी हमें पत्र भेजा है। साथियों, पत्रों का सिलसिला यहीं तक था, अब आगे बढ़ते हैं हम ईमेल की ओर। तो जो पहला ईमेल आया है आरव, ये हमें आया है लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी का। ये लिखते हैं, 3 जून के युवाणी कार्यक्रम लेकर आए हमारे कंपियर साथी। आजकल के विषय में बहुत ही बढ़िया साइकिल दिवस के बारे में चर्चा की गई। क्रम पत्र मिला में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और पत्रों को स्थान दिया गया और नाम शामिल किए गए, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही क्रम यादें के गीत सुनाए गए जो कि लाजवाब थे। इसके लिए हम बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हम अपेक्षा शुक्ला और दीपाली और युवाणी अनुभाग को बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: साथियों, युवाणी की हर शाम हमारे युवा साथियों के लिए आने वाले नए दिन के लिए पूरी उमंग और ऊर्जा के साथ तैयार होने का पैगाम लेकर आती है। हमारे कंपियर साथियों के विचार युवाओं के भीतर जीवन की हर परिस्थितियों में पूरे हौसले के साथ साथ सक्रिय रहने और हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नए विश्वास के साथ फिर से एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज़ युवाणी से यूं ही जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। पत्र भेजने के लिए आपका धन्यवाद।
0: इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए हैं, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव का, करीबदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा निर्मलकर का, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन का, चिरमिरी कुरसिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह का, आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल का, अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया का, पोटियाकला दुर्ग से संजय सुजाता साहू का। साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ईमेल किस दिन के लिए आया है और किसने भेजा है हमें। तो ये जो अगला ईमेल है ये हमें प्राप्त हुआ है 5 जून की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भिट्टे और सुशीला भिट्टे ने। ये लिखते हैं, 5 जून की सुरमई शाम में युवाणी को हमारे बीच लेकर आए आरव शुक्ला और श्रिया चक्रवर्ती, दोनों कंपियर साथियों की प्रस्तुतिकरण का अंदाज हमें बेहद पसंद आया। इस दिन क्रम आजकल में विश्व पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जो पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सार्थक प्रयास रहा। और इसी दिन क्रम मार्गदर्शन में एक भेंट वार्ता सुनने को मिली, जिसका विषय था 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं। इस विषय पर डॉक्टर सुमिता दवे जी से दीपक हटवार की बातचीत सुनने को मिली, जो हमें बेहद पसंद आई और उपयोगी और शिक्षाप्रद लगी। इस वार्ता के माध्यम से हमें करियर निर्माण के लिए MBA व BBA जैसे बेहतरीन व लोकप्रिय कोर्स की जानकारी मिली। और इसी दिन क्रम अपनी पसंद में सुनाए गए चुनिंदा फिल्मी नगमे हमें बेहद पसंद आए। कुल मिलाकर इस दिन की युवाणी के सभी क्रम रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक रहे। सफल प्रस्तुति के लिए डॉक्टर सुमिता दवे दीपक जी के साथ आरव शुक्ला और श्रिया चक्रवर्ती को ढेर सारी हम बधाई प्रेषित करते हैं।
1: दोस्तों, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जहां तक पर्यावरण की बात है, तो ये युवाओं के साथ साथ हर आयु वर्ग से जुड़े लोगों के लिए है, जिसके प्रति हम सभी को सजग होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हमारे घरों के आसपास जो पौधे लगाए जाते हैं, उन्हें वृक्ष का रूप देने में हम सबकी जिम्मेदारी है। उस पौधों को की जड़ों में पानी देने की बात हो या पशुओं से उसको बचाने की बात हो, ये छोटे छोटे कार्य भी हम कर ले तो हमारे पर्यावरण के प्रति जो समर्पण के भाव हैं वो बहुत ही अच्छे से निखर कर आएंगे। तो आइए दोस्तों, पर्यावरण के प्रति हम ध्यान दें। और आपको पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये जो अगला पत्र है आरव, ये जो अगला ईमेल है आरव, ये हमें आया है 7 जून की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है गेंदाटोला बाजार चौक राजनांदगांव से बीरेंद्र कुमार गुप्ता और अंजलि गुप्ता ने। ये लिखते हैं, 7 जून को दिन रविवार को हमें युवाणी कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसे पेश कर रही थी राजलक्ष्मी और अंजलि बंछोर, जिसमें हमें विश्व खाद्य दिवस के बारे में बताया गया। हमें बाहर का खाना सोच समझ कर खाना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी बातचीत के साथ युवाणी कार्यक्रम का आगाज हुआ और हमें आज मेरी बारी है में सुनने को मिली, जिसे पेश कर रही थी रूपाली आसूदानी, जिसमें हमें बताया कि पढ़ाई और फैशन के बारे में, जिसमें हमें पढ़ाई पर बहुत मेहनत करना चाहिए और फैशन को अपनी पहचान बनाना चाहिए, और बहुत से विषय पर चर्चा की गई। रूपाली जी के पसंद के गीत भी कर्णप्रिय लगे और हमें नए तराने के गीत भी सुनने को मिले। सभी कार्यक्रम बहुत ही पसंद आए। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए राजलक्ष्मी और अंजलि बंछोर को हम ढेर सारी बधाई प्रेषित करते हैं। इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए हैं। रानीगांव नगरी जिला धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू का।
1: अपेक्षा, विश्व खाद्य दिवस पर इनके भी विचार बहुत प्रेरक हैं। जहाँ तक अन्न की बात है, हमें खरीदने पर बड़ी आसानी से दुकान पर मिल जाता है, मगर इसी अन्न को उपजाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनकी मेहनत का हमें सम्मान करना चाहिए। अन्न को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। भोजन करते समय अपनी थाली में उतना ही लें जितनी ज़रूरत है, और विभिन्न आयोजनों में उतना ही पकाएं जितना खा सकें। रही बात बाहरी खाद्य पदार्थों की, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये जो अगला ईमेल है आरव, ये हमें आया है 8 जून की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है हजदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू ने। ये लिखते हैं, 8 जून दिन सोमवार के युवाणी को लेकर आए हमारे 2 कंपेयर साथी दीपाली चंद्राकर और विदिशा शर्मा ने आजकल में विश्व महासागर दिवस के बारे में बातचीत की। साथ ही उस दिन क्रम हेलो युवाणी सुनने को मिला, जिसे प्रस्तुत किया अपेक्षा शुक्ला ने। श्रोताओं से बातचीत की और श्रोताओं के पसंद के गीत भी सुनाए गए, जो हमें बहुत अच्छे लगे और शानदार लगे। अच्छी प्रस्तुति के लिए अपेक्षा शुक्ला, दीपाली चंद्राकर और विदिशा शर्मा को हम बधाई प्रेषित करते हैं। इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल प्राप्त हुए हैं। सिंगारवाड़ी गुटकू से भगत राम पटेल, किशन पटेल का। ममाया चौक से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल का।
1: अपेक्षा, विश्व महासागर दिवस पर इनके विचार बहुत प्रेरक हैं। जहाँ तक इस दिवस की बात करें, तो ये दिवस महासागरों द्वारा पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने, आजीविका के साधन प्रदान करने और समुद्री जीवों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना है। और साथियों, हमारे महासागर पृथ्वी की सतह के 70% भाग को ढकते हैं और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने से लेकर अरबों लोगों को भोजन प्रदान करने और विश्व की 80% जैव विविधता का आश्रय स्थल होने तक महासागर हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद।
0: साथियों, आप हमें क्रम पत्र मिला में पत्र भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है, क्रम पत्र मिला युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन है 492001। साथियों, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी है airyouth9@gmail.com और पत्र मिला का कोड है Y1। पत्र मिला यहीं तक।

0: अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।
1: वाह आरव, मशहूर शायर बशीर बद्र साहब के इन शेरों ने तो जैसे सीधे जज्बातों पर दस्तक ही दे दी। सच ही तो है, मोहब्बत में जब वो एक इंसान हमसे दूर होता है तो ये पूरी दुनिया बेगानी सी लगने लगती है।
0: बिल्कुल अपेक्षा, और जब ये दूरियां हद से गुजरने लगती है तो एक ऐसा खालीपन आता है जहाँ इंसान खुद को ही भूलने लगता है। तब दिल से बस एक ही पुकार निकलती है कि काश वे एक बार फिर से हमें आवाज़ दे दे। उनकी एक पुकार हमें गुमनामी के अंधेरों से वापस ले आए।
1: तो साथियों आइए बढ़ते हैं और आप सभी को सुनाते हैं क्रम युगल गीत की ये पहली प्रस्तुति।

0: साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन से ये गीत, जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। यह गीत था आनंद बख्शी, ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसे संगीत दिया था उत्तम सिंह ने।
1: और पसंद थी श्रोता साथियों की धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव की, संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू की, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी की, नर्मदा धाम सुरसुली से बिंदु यादव, सरस्वती, कविता, ममता यादव की, डोंगरगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजबिये की।
0: दोस्तों, मोहब्बत में जब थोड़ी सी शरारत और जमाने का डर आपस में मिल जाए तो एहसास बड़ा ही चुलबुला सा हो जाता है।
1: बिल्कुल आरव, वो मीठी सी नोकझोंक, वो मनुहार और साथ में ये मासूम सी घबराहट, कोई देख लेगा तो क्या ही सोचेगा, प्यार में ये डर भी बड़ा हसीन होता है।
0: बिल्कुल सच कहा, दिल तो चाहता है कि बस हर पल साथ गुजारें, लेकिन दुनिया की नजरों से बचकर छुपने छुपाने का अपना ही एक अलग मजा है दोस्तों।
1: तो दोस्तों, उसी प्यारी सी घबराहट और प्यार भरी छेड़छाड़ को समेटे हुए पेश है ये अगला गीत।

0: जाएगा।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने, और इसके गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे एचडी बर्मन।
2: और पसंद तीन श्रोता साथियों की बाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक जावेंद्र कुमार वर्मा की, गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी, चमेली भूमिका मोनिका पूनम साहू की, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू की, अमरपुर पेंड्रा से रेवा देवी, श्वेता सूरभि, अंजुला दिशा और लंबी श्रीवास्तव की।
1: साथियों बारिश का मौसम आने को है, और जब बरसात होती है तो मन कहने लगता है इस तरह मिल की मुलाकात अधूरी ना रहे, जिंदगी देख कोई बात अधूरी ना रहे, बादलों की तरह आए हो तो खुलकर बरसो, देखो इस बार बरसात अधूरी ना रहे।
2: दोस्तों डॉक्टर कुंवर बेचैन के इन्हीं शेर के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों आपने अभी सुना फिल्म श्री 420 से यह गीत, जिसे स्वर दिया था मन्ना दे और लता मंगेशकर ने। इसके गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: और पसंद थी श्रोता साथियों की दतरेंगी से विश्राम यदु पार्वती यदु, तरचुरा से ददुआ साहू, भूरी रेखा मोतीलाल साहू, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी शुभम सौरभ रावत की, पलारी से डगेश्वर राम साहू, गौरव साहू, नूतन घनश्याम साहू की, बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुश लक्की मुरली मोहन पटेल की।
0: प्रेम का एहसास भी कितना अजीब होता है ना अपेक्षा, जब इसकी शुरुआत होती है तो दिल और दिमाग के बीच एक गजब सा जंग छिड़ जाता है।
1: बिल्कुल आरव, दिल किसी की तरफ खींचने लगता है और लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता, बस एक मीठी सी उलझन रहती है और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर दिल चाहता क्या है।
0: तो दोस्तों इसी इनकार में छिपे इकरार और नोकझोंक को बयां करता है हमारा यह अगला गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है से ये गीत, जिसे स्वर दिया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इसके गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय।
1: और पसंद तीन श्रोता साथियों की गाथापारा से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज और प्रभुराम साहू की, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ज्योति रेयांश ठाकुर की, महादेवघाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारणी सूरज सुजला ठाकुर की, धमनी से ममता धीवर, मुन्नी धीवर की, राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता आदि और कृष श्रीवास्तव की, डोंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार, कविता और जयंती ध्रुव की, पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ संजय और पूजा प्रधान की।
0: तो साथियों अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, पर इससे पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। तो कल का क्रम सजेगा छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे पहुना जोहार और हमर गांव।
1: इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला
0: और आरव शुक्ला को,
1: और स्वीकारे हमारा
0: नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी

0: सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुना

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारी अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डे का है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहिन। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी है 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। उमन पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड ला तोड़ीन है जौन पहली घाव 13 मई 1952 के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहीन और 27 मई 1964 तक पद्मा बने रहीन। पंडित नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन के रहीस। 26 मई 2014 ले आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री श्री मोदी के सरलक कार्यकाल अब 4,399 दिन के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मन नरेंद्र मोदी ल देश के सबले ज्यादा बेरा तक सरलग निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मा बधाई दिन है। यही बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज एक प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ल सरलग 2 कार्यकाल तक सबले ज्यादा बेरा तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मा बधाई दिन। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान सदस्य मन प्रधानमंत्री श्री मोदी पर सम्मान जतैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक के अगुवाई करी। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के मुताबिक एसओ के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। परिषद के बैठक में ये सोच ला साकार करे खातिर गोट बात करे जाही। परिषद के बैठक में मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचा में गोट बात करही जो 4 मुख्य स्तंभ में आधारित हवे। बैठक में पाछू बछर 26 से 28 दिसंबर के दौरान राखे गए मुख्य सचिव के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन के सिफारिश में घलो गोट बात होही। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले लागू होही। एमा छत्तीसगढ़ ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन जारी करेगे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री मन संग हुए वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दीन। ये रकम ले ग्राम पंचायत ला सोझे फायदा मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास काम ला गति मिली। बैठक में श्रमिक मन ला बेरा में मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्था ला मजबूत करे में जोर देगी। बिलासपुर में काली राखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कहिन के विकसित भारत के आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी है। ओमन कहिन की बछर 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में हर एक नागरिक के महत्ता की भूमिका हवे। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू व केंद्र सरकार के आने आने जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धि लबतात राष्ट्र निर्माण पर सामूहिक प्रयास के आह्वान करें। उमन किहिन की प्रधानमंत्री के अगुवाई में देश आने आने क्षेत्र में तेजी ले बढ़वार करत है। राज्यपाल रमन डे का है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाय खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहिन है। राज्यपाल ले आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल डॉक्टर सिंह ले विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा के स्थिति और जरूरी शैक्षणिक सुविधा के संबंध में गोट बात हुई है। राज्यपाल ले प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा समेत आने आने अधिकारी मन घलो भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल शहर और नवा रायपुर में लगाए गए पौधा के रख रखाव में विशेष ध्यान दे बर किहिन है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में 28 जून के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चला जाही। एमा जन्म ले 5 बछर तक 3,45,000 ले ज्यादा लइका मन ला पोलियो के खुराक पियाए के लक्ष्य रखे गए है। रायपुर जिला में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाही। अभियान के दिन जौन लइका मन पोलियो के खुराक नहीं पी पाही ओमन ला अवैया 2 दिन तक घर घर जाके खुराक दे जाही। छत्तीसगढ़ में रद्दा दुर्घटना में कमी लाए बर तकनीक आधारित निगरानी, बने चालक प्रशिक्षण और यातायात नियम के पालन में जोर दे जावत है। नवा रायपुर में रखे गए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा के संगे संग मंत्री केदार कश्यप तैयारी के समीक्षा करीन। बैठक में बताया गया है कि जनवरी ले मई 2026 तक 31,000 ले ज्यादा गाड़ी के फिटनेस जांच करे गए है। उन्हें ANPR कैमरा और आने तकनीकी माध्यम ले 61,000 ले ज्यादा चालान जारी करेगे है। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है काली रायपुर क्षेत्र के आने आने आवासीय कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटी के अगुवाई करैया मन संग बैठका करके उखर समस्या और सुझाव पर गोट बात करीन। बैठका में रद्दा, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधा ले जुड़े मुद्दा उठाएगी से। श्री चौधरी है संबंधित अधिकारी मन ले समस्या के समाधान करे बर कार्रवाई करे के निर्देश दीन। रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR है अनुसूचित जाति उपयोजना में धान बीज वितरण कार्यक्रम राखीन। ये दौरान पचेड़ा, बेलटुकरी और बिठिया गांव के 170 ले ज्यादा किसान मल्ला उन्नत धान बीज बांटेगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर पी के राय है किसान मल्ला संतुलित खातु बउरे और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन के जानकारी घलो दीन। कार्यक्रम के उद्देश्य उत्पादन ला बढ़ाना और किसान मन के आमदनी में बढ़वार करना है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में पाछू 26 मई के होए एक ज्वेलरी व्यवसायी के हत्या और लूट के वारदात के खुलासा करत पुलिस 7 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले करीबन 40 ग्राम सोना और 4 किलो ले ज्यादा चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में बउरे गाड़ी जब्त करे गए है। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा बतेन कि मुख्य आरोपी खुशीराम साहू है बिहार और झारखंड के अपन संगी मन संग मिल के व्यापारी प्रदीप सोनी ले सोना चांदी ले भरे बैग लूटे के प्रयास करीन। व्यापारी है जब एकर विरोध करी तभी एक आरोपी है ओखर ऊपर गोली चला दीस जेमा ओखर मौत हो गए। एकर बाद आरोपी लूटे आभूषण लेके फरार हो गए। उमन बतेन कि बिलासपुर रेंज और गोरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस कार्रवाई करत छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में दबिश दे के 7 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस साले ओना धान खरीदी केंद्र में 99,00,000 रुपया ले ज्यादा के घोटाला के मामला में 4 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। ये आरोपी मना बछर 2025-26 में 3,140 कुंटल ले ज्यादा धान बिसाए के फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखा के घोटाला करीन। उन्हें बारदाना में घलो हेरा फेरी करीन है। पुलिस है ये मामला में पहली समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार कर ली है। बालोद जिला के डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल के टीम है गांजा तस्करी के आरोप में 5 झीन ला गिरफ्तार करके उखड़ती ले 72 किलो गांजा बरामद करे हैं। जब्त करेगी गांजा के कीमत करीबन 26,00,000 रुपया बताए जाते। मुखबिर ले मिले सूचना में पुलिस भेड़ी तिराहा तीर नाकाबंदी करके गाड़ी के जाँच करी। यही बेरा 4 आने आने फटफटी ले ओडिशा ले मध्य प्रदेश ले जावत गांजा पकड़ेगी। पुलिस 4 आरोपी और फटफटी ला जब्त करे है। और अब थोरकुन समाचार सारमा। राज्य शासन है गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा ला अस्थायी रूप ले सहकारिता और रजिस्ट्रार और सहकारी समिति के आयुक्त नियुक्त करे हैं। और कबीरधाम जिला में साइबर सेल और पुलिस के टीम है IPL क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलैया 2 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश का करीबन 3,300 54 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे हे जारी। और राज्यपाल रमन डेका हर राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मन ला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहीन। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। वस्त्राणां कृते PLI योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवाय विशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। प्रायः 13,000 करोड़ रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः। रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 करोड़ रूप्यकाणां अनुबन्धः स्वीकृतः। अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतांत्रिक रूपेण निरंतरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमंत्री अवदत्। श्री मोदी 14-2000 वर्षे मई मासस्य 26 दिनांके शपथ ग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्। यो हि प्रथमवारं 25-29 वर्षे मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृत्य 64-29 वर्षे मई मासस्य 27 दिनांक पर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पंडित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमंत्रित्वेन कार्यकालः 98-300 दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99-300 दिनानि यावत् अस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायि विश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः, कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराजसिंह चौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतन्त्रभारतस्य दीर्घतम निरन्तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायि विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन, संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, विधि न्याय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिं च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा पीएलआई इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्य अन्तर्गतं 22 नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्र मंत्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीय चक्रस्य अन्तर्गतं आहत्य 96 समवाय विशेषाः चिताः सन्ति, येषु 22,800,000 प्रतिबद्ध निवेशः, 58,000 प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49,400,000 अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पाञ्च निरूपयति।
3: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
2: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
2: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,200,000,000,000 व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
2: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्य अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG सम्पर्कान् PNG सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम वो हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
2: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पक्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्यवायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिकगृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत् यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्ता।

0: ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नमन दत्त और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए निदा फाजली की ये गज़ल।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुना

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोट स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए डॉक्टर नमन दत्त की आवाज में सलीम कौसर की ये गजल।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे डॉक्टर नमन दत्त। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर बने रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398

0: कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। साथ ही यह 140 करोड़ भारतवासियों के अटूट विश्वास, सम्मान और श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को प्राप्त अभूतपूर्व जनसमर्थन का सशक्त प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। यह ढांचा चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले वर्ष 26 से 28 दिसंबर के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इस संबंध में कल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरिम आवंटन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की है। छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रूपये का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, ईकेवाईसी और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने आवश्यक कदम उठाने को कहा है। राज्यपाल से आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने डॉ. सिंह से विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति और वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 3,45,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर जिले में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। अभियान के दिन छूटे बच्चों को अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायपुर क्षेत्र की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। बैठक में सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और अधोसंरचना विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए। श्री चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर भी जोर दिया। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में बीते 26 मई को हुई एक ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 40 ग्राम सोना, 4 किलो से अधिक चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किए गए हैं।
1: 26 मई के शाम को कोटमी साप्ताहिक बाजार में एक सोने चांदी के व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट करके उनकी

0: हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी और इसी क्रम में अभी तक हमने जो इस घटना से जुड़े जितने आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनसे अलग अलग उस पे सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो बरामद सामग्री में हमको 2 नग देसी कट्टा मिला हुआ है और 4 नग कारतूस मिले हुए हैं। इसके अलावा जो आभूषण हमने जब्त किए हैं उसमें 40 ग्राम सोना और चांदी लगभग 4.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हम लोग से रिकवर कर पाए।
1: बालोद जिले की डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 26 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने भेड़ी तिराहा पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इसी दौरान 4 अलग अलग मोटरसाइकिल के जरिए ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने चारों मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने साल्हे ऊना धान खरीदी केंद्र में 99 लाख रुपए से अधिक के घोटाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने वर्ष 2025-26 में 3,140 क्विंटल से अधिक धान खरीदी की फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखाकर यह घोटाला किया। वहीं बारदाने में भी हेराफेरी की। पुलिस इस मामले में पहले ही समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर चुकी है। और पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
2: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और वर्षा का मुख्य क्षेत्र जो है वो बस्तर संभाग होने की चांसेस है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन में होने की चांसेस है और ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी जारी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में 2 दिन तक कोई विशेष परिवर्तन होने की तो चांस नहीं है।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से सहकारिता और रजिस्ट्रार तथा सहकारी समितियों का आयुक्त नियुक्त किया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने रिसाली नगर निगम की पार्षद पार्वती महानंद को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में नोटिस जारी कर 25 जून तक जवाब मांगा है। जांजगीर चांपा जिले के पुटपुरा गांव में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सक्ती जिले के सिंदूरस गांव में बीते 2 और 3 जून की दरमियानी रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में मालखरौदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के बाद लूट का माल खरीदने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम जिले में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने आईपीएल क्रिकेट के मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टे का संचालन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में आज एक पटाखा गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं पीके, इस फिल्म का गीत, आवाजें शान और श्रेया घोषाल की। स्वानंद किरकिरी के बोल हैं, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

एयर लिफ्ट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत के लिए आवाज़ें थी अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और साथियों की। कुमार के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी अमाल मलिक ने। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज़ में फिल्म काइट्स का गीत। राजेश रोशन का संगीत है, गीतकार है नासिर फराज़।

काइट्स इस फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम विनीता दीदी।
1: राम राम मनीषा, और संगे संग चौपाल सुनिया जम्मू संगवारी माला घलो हमर दुनो के
0: राम राम, राम।
1: बने बने मनीषा, गजब दिन में भेंट होई से या तोर संग।
0: दीदी अब्बड़ दिन में तो भेंट होई से, देखना ए देख गर्मी के हमन हम मजा लेवत रहिन।
1: ऐसे
0: बिहनिया झटकुन बूता निपटा के दिन भर घरच के भीतर रहन,
1: खुशरे
0: रहा।
1: बात तो सही है मनीषा, देख हमरो घर सब लड़का बच्चा सब सकलाए हैं, अब छुट्टी है ता फिर कहाँ घुमाए बर लगबे, यहाँ गर्मी में बताना है।
0: हाँ दीदी, फिर आगू बूता बाढ़ी है नहीं। हाँ, दीदी
1: अवैया दिन में
0: अवैया दिन में बाढ़ी है नहीं, गर्मी के पाछू अब आने वाला दिन में बाढ़ी, घर परिवार के गोठ ले निकल के बात करन कहूँ खेती किसानी के, तब अवश्य आने वाला
1: दिन जो है। हाँ, तो ओखरेचे बिल्कुल सही बात, अब अवैया दिन पानी
0: के है ना।
1: हाँ, तो भाई काम बुतत बाढ़वे करी, बिल्कुल सही कहे मनीषा। और देख अवैया जो खरीफ फसल के तैयारी है जो है ना, वो लगभग जो किसान हक कट डरे है ना।
0: हाँ।
1: अब जैसे देख खेत के मेड़ पार दुरुस्त करके, वो खेत के गहर जुताई करे के, नींदा साफ सफाई, ये सब काम जो है वो हो गए।
0: हाँ दीदी, अब इसने है खातू बीजा के व्यवस्था है नहीं, यहू लक डरे है, और जिखर ये सब काम बाँचे है ओ मन हा पूरा करे में लगे हवे।
1: बिल्कुल सही कहे मनीषा, अब देख काबर की अब समय में सबो काम हो जाते ना, तब बेरम किसानी बुता जो है शुरू हो जाते हैं। कही थे ना, देख डारक चूके बेंद्रा और बेरक चूके किसान है, एक बेर चूक हो गए तब किसान जो है पछुआ जाते।
0: हाँ दीदी, और गोठियावा थन है नहीं, और कहूँ हमर से चूक हो गए है नहीं, तो हम मन तो चुक जबो दीदी,
1: पछुआ जबो उनका। हाँ। नहीं, नहीं पछवान गोई हमला सुरता है, क्रम चिट्ठी मिली इसके जाने।
0: हाँ।
1: फिर एक कनी गोठिया लेबे मनीषा, तब बने लागते ते। हाँ। पाए के थोड़ी गोट बात कर लेने आ, ले तब शुरू कर भाई संगवारी मन के जो मेल भेजे हैं और चिट्ठी आए है तो उनला पढ़े बार क्रम चिट्ठी मिली इसमें।
0: हाँ दीदी, त ये पहला मेल आए हवा 4 जून गुरुवार के चौपाल कार्यक्रम के है नी। एकर के अंतर्गत आज के किसान मनी माँ आज के क्रम रही से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्व, ए विषय में जानकारी दे रही विशेषज्ञ रही है वो दिन के डॉक्टर नीतीश तिवारी। ए दिन के जानकारी बड़ उपयोगी लगीस और बेरा के रहीस, त अतिक सुघर जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ और चौपाल प्रभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई दे हबे। हमर ये संगवारी मन हबे।
1: कौन संगवारी है?
0: ए मन हबे गर्रा पार बांधा बाजार ले गंगाराम सिलोचना साहू, मानवेंद्र साहू, राकेश साहू, लोरमी ग्राम चचड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, और भाटापारा ले भेजी छाबे मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हाव्या और तन्नु रजक मन।
1: तो देख ऐसे है मनीषा, गर्मी है ना, गर्मी में जब ज्यादातर खेत जो है खाली रहते है ना, तब का है वो बेरा में गहिर जुताई जरूर करना चाहिए। गहिर जुताई से का है माटी तरी ऊपर जब होते ना, तब माटी के भीतर जो कीड़ा कीट व्याधि रहते ना, वो गर्मी ताप में खत्म हो जाते, नींदा कचरा घलो सब साफ हो जाते, माने माटी के कहां तो निर्जीवीकरण हो जाते। तब वो रिकीम ले खेत के गहिर जुताई के बहुत महत्व है, और यही सब बात ला फरियार फरियार के विशेषज्ञ द्वारा बताया गया इसे दिन की जानकारी में। तो संगवारी मन ला उपयोगी लगी से इसे लिखे है, तो चिट्ठी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ दीदी, अब ये अगला पाती पठोए हवा है शुक्रवार 5 जून के चौपाल कार्यक्रम खातिर। संगवारी मन लिखे हवा है कि ये क्रम रही से हेलो चौपाल फोन इन कार्यक्रम, जेखर अंतर्गत जानकारी के विषय रही से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और ओखर प्रबंधन। ये संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर है ना,
1: सुधीर उप्रित
0: उप्रित है नी। हाँ। सुधीर उप्रित जी है, बहुत सुघर फरिया के विस्तार ले जानकारी दी है। देख के संग फोन इन द्वारा संगवारी मन के समस्या के समाधान घलो करीन है, जौन हर हमर बर बड़ उपयोगी और लाभ के लाही से, त अतका फायदा के जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ और चौपाल प्रभाग ला बधाई दे है। हमर संगवारी मन है,
1: कौन संगवारी है?
0: नागर कोहरा ले झग्गर राम साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू, और परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुसारनी और खुमेंद्र मसिया।
1: तो देख मनीषा ऐसे है, किसान जो है खेती संग लगे लिए व्यवसाय भी करते है ना।
0: हाँ।
1: और प्रमुख रूप ले कहा तो दूध उत्पादन के जो व्यवसाय है वो होते है।
0: हाँ।
1: काबर की पशुधन हर घर होते है। देख दूध के जो सही प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाते ऐसन में। साफ सफाई के विशेष ध्यान और सावधानी होना चाहिए, काबर की अतेक मात्रा में दूध के सही प्रबंधन नहीं हो का होते दूध और ओखर ले बने जो उत्पाद है वो खराब हो जाते या खराब हो के डर रहते है ना, तो व्यवसाय में नुकसानी हो जाते। तो यही पाए के सबो बात ला जो है डॉक्टर उपरीत जी हा बतईन है और संगवारी मन के यही ले संबंधित जो समस्या रही से उनका समाधान करीन है, जो संगवारी मन पर उपयोगी रही से चिट्ठी लिखीन, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ दीदी, अब अगला पाती हावे 6 जून शनिवार के किसान वाणी में, जेमा आज है नी आज के सवाल क्रम में विशेषज्ञ श्रीमती पुष्पा साहू द्वारा दे गए जानकारी बहुत उपयोगी और जरूरी लागिस। विषय रही से घर के छत में जैविक विधि ले सब्जी और फल उत्पादन, एकर बारे में अतका सुघर ढंग ले दीदी हा बतईन जौन हर बड़ लाभ के लागिस। एकर खातिर हरियाली दीदी और चौपाल प्रभागला बहुत बहुत बधाई। ये जिन्हा पाती हाबे ना ओला हमार ये संगवारी मन पठोय हाबे, नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति और पार्थ कश्यप, राजेंद्र वर्मा, मनहरण वर्मा।
1: देख ऐसे है मनीषा, घर के अंगना बारी में जैसे जेखर में जैसे जगह रहते हैं ओमन कुछ न कुछ साग सब्जी लगावे करते हैं और जरूरी भी है आज के समय के मांग घलो के है ना। फिर वही ल कहूँ और व्यवस्थित रूप ले तैयारी करके जैसे जगह भी नहीं है तो घर है घर के छत है तो ऊ में साग सब्जी फल लगा के बने घरोधी रूप ले खाए बार घर परिवार के अपन खाए पूर्ति तो हो ही जाते है ना। घर खाए बार का है ताजा शुद्ध जिनिस मिलबे करते और कहूँ ज्यादा हुआ थे तो आय के साधन घलो बन जाते है ना। तो पुष्पा साहू जी जो अपन अनुभव बताई है कि अपन छत में कैसन साग सब्जी लगाते हैं, कैसन फल लगाते हैं और कौन ढंग ले उखर बने देख रेख करते हैं और का डालते हैं और कैसन जैविक खाद के उपयोग ले मन जो अपन फल और साग सब्जी लगाते हैं ये सब बात ला बताइन है उखर अनुभव जो है सिरतोन में उपयोगी रही से और वो रिकीम ले कहा तो ये जो जानकारी है दिन के वो सुने के संगे संग गुने के लेकर रही से है ना। तो संगवारी मन चिट्ठी लिखी ने मन पसंद आई से चिट्ठी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ दीदी, और ये अगला पाती ला पठोय हाबाय 7 जून रविवार के चौपाल मा भेंट वार्ता सुनाई गई रही से विषय रही से वर्षा जल संरक्षण और शून्य भू परिकरण है नी। हाँ। विशेषज्ञ रही ने डॉक्टर के साहू, अभी के बेरा मा ये जानकारी बहुत सही और जरूरी लागिस, अतका उपयोगी जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ और चौपाल प्रभाग ला बहुत बहुत बधाई। और ये बात ला लिख के पठोय हाबाय हमार संगवारी मन है चरौदा सारा गाँव ले सुजान वर्मा, आयुषी सहोद्रा, फिरत राम और निर्मला और संग में ये दिन के कार्यक्रम ला पसंद करे हाबाय चट डोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन जय कुमार और कुमारी साहू हर।
1: तो देख मनीषा,

0: के हर बूंद कीमती है, तो एला बचा के रखना है ना। तो देखो संगी हो, अवैया दिन जो है बरसात के होई, और बरसात में का है पानी बरसते और बहुत ज्यादा पानी जो है खैता हो जाते बुहा के, कैसे मनीषा है ना, कहूँ ओखर सही प्रबंधन नहीं करबे ना तो सारी पानी है खैता हो जाते है ना। तो ओखर संरक्षण बर सही प्रबंधन जरूरी है। तो ये दिन जो है विशेषज्ञ द्वारा वर्षा जल संरक्षण के बारे में, ओखर संवर्धन के बारे में बताइन कि कैसे पानी सकेल के रखे जाए, कैसे ओखर उपयोग करे जाए, तो ये सब बात ला बताइन है जो आप मन उपयोगी लगी से आप मन चिट्ठी लिखे, एखर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ दीदी, और ये आखिरी पाती लपट होए हाँ भाई, मंगलवार 9 जून के चौपाल माँ किसान वाणी के अंतर्गत है नी क्रम रही से हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम, जे माँ चर्चा के विषय रही से वर्षा कालीन सब्जियों की नर्सरी, ये संबंध माँ संगवारी मन के समस्या के समाधान फोन द्वारा करके करे हैं नी, संगे संग बहुत बढ़िया ढंग ले बताइन जो उन्हा बड़ उपयोगी लागे सो जानकारी दिन तेन आऊ अतिक सुघर जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ डॉक्टर कमल नारायण वर्मा और चौपाल प्रभा कंपियर संगी मल्ला गाड़ा कर बधाई पठोए है हमार संगवारी मन है।
0: कौन है?
1: हाँ, बेमे तरह नवा पारा ले ईश्वरी प्रसाद साहू, भावना साहू, नीलेश श्रद्धा साहू और अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर गुड़िया और रेयांश ठाकुर।
0: तो देखो ऐसे है मनीषा, देख अवैया दिन तो अब साग सब्जी के फसल लेके दिन है ना। हाँ। तो वो हिसाब ले साग सब्जी फसल लेबर नर्सरी तैयार करे के ही बेरा होते हैं।
1: हाँ,
0: पहले तैयारी करबे तभी तो तेकरे बारे में विस्तार ले दिन जानकारी जो है बताए गए रही से, और संगवारी मन के समस्या के भी निवार जो है फोन द्वारा करे गए रही से विशेषज्ञ द्वारा जोन बेरा के रही से और जोन आज आप मतलब फायदा के लगी से, तो आपन चिट्ठी लिखे एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीषा ये तो रही से क्रम चिट्ठी मिलीस है ना, और अब सुनथनी संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: मनीषा,
4: हाँ जी,
3: देख जैसे कि हम शुरू में गोठियात रहे ना कि किसान संगी मन जो है अवैया खरीफ फसल के तैयारी में लग गए हैं, इसे के
4: हाँ दीदी, और खरीफ के धान के फसल के बात करन तब धान के नर्सरी तैयार करे के समय मई के है नी आखिरी हफ्ता ले जून तक माने जाते हैं।
3: हाँ देख का है, कोनो भी फसल लेबे तो खर पहली ओखर नर्सरी तैयार करेल पड़ते ना, है ना। तो फिर देख यू है ना मनीषा कि का है धान के जोन किसम होते, जोन किसम किसान लगाए बर चुने हैं, माने कमती अवधि वाले या ज्यादा अवधि वाले, तब वो रिकीम ले वो क्षेत्र के मौसम ऊपर भी निर्भर करते।
4: हाँ दीदी, अबे देख ना, ये देख कमती अवधि वाले जिन है ना तो ओमा नर्सरी जिन किसम है नी ओकर नर्सरी ला 20 मई ले 30 जून के बीच में डाले जा सकते।
3: हाँ।
4: अब इसने है मध्यम और लंबा अवधि वाले जिन है किस्म के जिन धान है तेकर नर्सरी ला 20 मई ले 10 जून तक डाले जाते।
3: हाँ, और देख नर्सरी तैयार करे के बाद ना मनीषा समय के बरोबर ध्यान देना पड़ते। 20 ले 25 दिन में कहन तो नर्सरी जो है रोपाई बर तैयार हो जाते।
4: हाँ।
3: तो वो रिकीम ले 30 ले 35 दिन से ज्यादा झन हो पावा, ये बात के जरूर ध्यान रखना चाहिए।
4: इसने है बीज के मात्रा बर एक ठन है नी पाछू
3: एकड़ पाछू में। हाँ, हाँ।
4: एकड़ पाछू 6-8 किलो हाइब्रिड किस्म के बीज ला या सामान्य किस्म के 10-12 किलो के बीज पर्याप्त
3: होते। और बुआई ले पहली ना मनीषा बीज ला फफूंद नाशक से उपचारित जरूर करना चाहिए ताकि पौधा में कोनो झुलसा बकनी रोग झन लगे और पौधा जो है स्वस्थ निरोग रहे और निरोग पौधा जो है तैयार हुआ है ना।
4: हाँ दीदी,
3: तब ऐसा ढंग ले का है धान की नर्सरी तैयार करे बर का है जल प्रबंधन, बीजोपचार और पोषक तत्व के सही प्रबंधन करना जो है बहुत जरूरी होते।
4: हाँ।
3: मनीषा है ना, तो देख ये तो हम धान के नर्सरी और प्रबंधन के बात करें मनीषा, फिर एक बात है कि किसान कोनो भी फसल लेवाए ओकर अच्छा उत्पादन के चाह जो रहते वो चाह में वह अंधाधुंध जो है रासायनिक खातों के उपयोग करे है ना, तेखर दुष्परिणाम आज हमन सब देखा था हमारे सामने में है नी।
4: हाँ दीदी, अब देखना धीरे धीरे करके ये दे माटी के उर्वरता क्षमता छीन हो जाते।
3: हाँ।
4: पर्यावरण के संतुलन बिगड़ जाते है नी, फसल के गुणवत्ता सही नहीं होते,

0: दीदी बता ऐसा में हम
1: तो वो रिकिम ने देख माटी के उर्वरता ला बचाए खातिर चेत करे के उदिम घला अब हमिल करेल पर ही मनीषा है
0: और क्या कहते हमन ये दे अभी बाप माटिल कैसे भुला सकथन दीदी यदि हमन घर में का है बैठे रहथन है नी और गरम गरम दार भात और रोटी ला खाथन त ऐसन में हमन वो खेत और माटी ला कैसे भुला सकथन त ऐसन में दीदी जरूरी हो जाते कि जैसे हमन अपन तबीयत के ध्यान रखथन है नी वैसने सुंदर सुंदर माटी के
1: घलो के देख रेख करन है ना ओकरो स्वास्थ्य के देख रेख करन
0: हाँ दीदी
1: सुधार के रखन है
0: सुधार के रखन ऐसे कैसे कहथन नहीं संगवारी मल्ला अगर कहन त कुछ दिन के पहली ए दे खेत के सुंदर हरियर गहना मा गांव के सुंदरता निखर थे किसान के बूंद बूंद पसीना हर अनाज बन के उपज थे
1: का बात है
0: हाँ और देख दीदी आउ आगू का गोट करत हन तब माटी कही थे सुनो किसान रसायन रूपी जहर ले दुर्या मोला राखाओ संतुलित खाद और पानी देवाओ मोला अपन आगू पीढ़ी बर बचा के
1: क्या बात बहुत बढ़िया बात कहते हैं कविता के रूप में मनीषा और देखो संगवारी हो माटी के तबियत बिगड़त जाते भुइया जो है पानी के स्तर घलो घटत जाते भुइया के है ना अंधाधुंध रसायन के उपयोग ले ओखर जो उर्वरता है उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाते तो हमला अब का है समय के हिसाब ले माटी के जांच करवा के और वो हिसाब ले हमला पोषक तत्व देना है
0: हाँ,
1: है ना और पर्यावरण ला भी बचाना है और जैव उर्वरक के उपयोग करना है हरी खाद के उपयोग करन तभी हमार जो माटी है वो सुरक्षित रही हमार खेत जो है वो सुरक्षित रही है ना मनीषा
0: हाँ, दी, दी।
1: तो देखा गोड बात अब बहुत हो गए मनीषा एक बढ़िया सही गीत सुनते हैं तो बुद्धि सागर शर्मा और रजनी रजक के स्वर में सुनथन ये गीत

0: दीदी अभी सुनें बुद्धि सागर शर्मा और रजनी रजक के स्वर में ये सुघर गीत लगा।
1: मजा आ गया ना गीत में,
0: बहुत मजा आ गया।
1: और देख मनीषा, अभी जैसे कि अब अभी तो गर्मी हवा है, फिर अवैया दिन बरसात के हुई है ना, और बरसात में जो किसान घर पशुधन रही थे या माने घरेलू घलो पशुधन रहे थे या फिर कोनो हर प्रकार के पशुधन जैसे पालते कोनो बकरी है भेड़ है ना, इसमें पालते तो ये समय जो उन्हें संक्रमण काल रहे थे, तो ऐसा बेरा में कहा है बीमारी जो है वो जल्दी फैलते है ना, ते पाए के जोन भी हम पशुधन रख रहे थे, जोन भी माल मवेशी रख रहे थे, तो ओखर बरोबर सही बेरा में ओखर टीकाकरण बहुत जरूरी होते है ना, और कहूँ को कुछ रोग हो गए तो ओकर कारण लक्षण ला पहचानना भी जरूरी होते। तो देख आज हमन आज की सलाह क्रम में PPR बीमारी माने भेड़ बकरी में होवैया प्लेग रोग कारण लक्षण और बचाव ये संबंध में जो बतावत है विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव राय जी, तो उन सुनथन। आप हैं अतिरिक्त उप संचालक जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर, और इखर संग गोट बात हो मनीषा दीदी के, तो उन सुनथन संगी हो।
2: संगवारी हो, भेड़ और बकरी पालन आज हजारों किसान परिवार मन के आमदनी के जरिया हवाए, फिर जब एमा कोई बीमारी हो जाते त किसान भाई मन के मेहनत और सपना दोनों ऊपर भारी असर पड़ते। ऐसे बीमारी के चलते कई जन किसान भाई मन ला आर्थिक नुकसान उठाए बर पड़ते और भी कई प्रकार के समस्या के सामना करेला पड़ते। सबले बड़े परेशानी तब होते जब सही जानकारी समय में नहीं मिल पाओ कि कौन से बीमारी हुआ थे, काबर फैला थे औ एकर हमन हा चिकित्सा कैसे कर सकत हन, एला हमन कैसे रोक सकत हन। त आज हमार कार्यक्रम PPR बीमारी माने भेड़ बकरी ला होने वाला प्लेग रोग कारण लक्षण और चिकित्सा ये विषय ले संबंधित समस्या के समाधान करे खातिर उपस्थित हावे पशु चिकित्सा क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी डॉक्टर संजीव राय जी, अतिरिक्त उप संचालक जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर। सबले पहले डॉक्टर साहब आप मन के हमर कार्यक्रम में स्वागत है, राम राम।
3: राम राम।
2: डॉक्टर साहब आप मन हमारा बताते हो कि यह PPR बीमारी का हर है और यह खतरनाक काबर माने जाते।
3: PPR रोग जो है बकरियों में होने वाले बहुत सारे रोगों में सबसे नंबर वन किलर डिजीज है
2: जी,
3: और इसका आर्थिक महत्व तो है, और किसान भाइयों को जो छोटे किसान है सीमांत किसान है उनके आजीविका पे बहुत बुरा असर डालता है। PPR एक वायरस से होने वाला रोग है और इसमें मृत्यु दर अत्यधिक होती
2: है। सर यह वायरस ले संबंधित बीमारी हरे, मतलब यह संक्रामक बीमारी हमन कही सकत हन।
3: ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ द्वारा नोटिफाइबल भी घोषित किया गया है, और इसीलिए भारत सरकार इस पे को ध्यान में रखते हुए PPR कंट्रोल प्रोग्राम जो केंद्रीय सहायता से 100% केंद्रीय सहायता से चल स्कीम है वो चला रही है, और राज्य सरकार के सहायता से इसको मास वैक्सीनेशन कैंप करके इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इसके अलावा बहुत सारे रोग होते हैं जो बकरियों में होते हैं और आप बकरी उत्पादन में बकरी किसानों को के लिए समस्या पैदा करते हैं, तो उसमें PPR के अलावा एंटरोटॉक्सीमिया, गोट पॉक्स, ये सब बहुत

0: ज्यादा प्रभावित करने वाले रोग हैं और ज्यादातर कुछ रोग तो कृमि की वजह से भी होते हैं, लेकिन इसके बचाव के लिए इसमें इनका टीका उपलब्ध रहता है। तो पीपीआर का टीका, टेट्रोटॉक्सिमिया का टीका और इस तरीके के गोटपॉक्स के टीके भी लगाए जाते हैं शासन के द्वारा अभियान चला के, जो पशु चिकित्सालय है निकट के उनके द्वारा किए जाते हैं, तो इससे रोग का बचाव होता है। लेकिन इसमें उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उसका बचाव करना है। और कैसे कोई बकरियां बीमार हैं या कैसे आप पहचानेंगे, तो इसके लिए आप ये देखें, बकरियां जो हैं वो झुंड में रहती हैं, तो जो बीमार बकरियां रहती हैं उनका स्वभाव भी बदल जाता है। कुछ बकरियों को आप पाएंगे कि सुस्त हो जाती हैं और वो झुंड से अलग हो जाती हैं, पिछड़ जाती हैं, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। फिर उनका खाना पीना में जो दैनिक जो उनका व्यवहार है वो बदल जाता है, खाने पीने का उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा कई कई बीमारियों में जैसे लंगड़ापन वगैरह है, चलने में को अंतर समझ में आएगा, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये बकरियां बीमार हैं और उसके लिए आपको पशु उपचार की और सलाह की जरूरत। जब भी आप पशु चयन करें तो बात जरूर रखना चाहिए कि जो हम जहां से पशु खरीद रहे हैं वो स्रोत विश्वस्त होना चाहिए और वहां पर आसपास निश्चिंत होना चाहिए कि जो पशु हैं वहां पे कोई बीमारी फैली ना हो। और अच्छा तो ये हो कि आप सीधे जो अच्छे किसान हैं जिनके पास अच्छा झुंड है, अच्छा जिनके पास में सरप्लस में बेच सकते हैं उनसे खरीदें। और जानवर खरीदते समय ये ध्यान रखें कि उनका कम से कम 20-25 दिन पहले या फिर जो टीकाकृत जानवर हो, मतलब उनमें टीकाकरण हुआ हो बराबर समय से पहले, ताकि जब आप खरीदते हैं तो उसमें सुरक्षित पशु मिले, नहीं तो वो पशु आपके दूसरे पशुओं में भी बीमारी पैदा करते हैं। और बिल्कुल आपको देखने में समझ में आएगा कि वो बिल्कुल सामान्य उनका व्यवहार है, चंचल है, खाना पीना भी सही है, तो इस तरीके से आप उसको देख के और विश्वस्त स्रोत से आप पशु को चयन करें और खरीदें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप मन बताए हो कि बीमारी ले बचाव खातिर पशु मन के टीकाकरण करना चाहिए
0: जी,
1: तो ये टीकाकरण कौन कौन से, मतलब जिसे पैदा हुई से तब से लेके कब तक करना चाहिए और कहाँ होते
0: हैं? हाँ, ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें शुरू में तो उनको जो दूध मिलता है कोलोस्ट्रम कहा जाता है, पीयूष बोलते हैं, तो वो अपनी माँ से ही उसको कोलोस्ट्रम के जरिए उसकी सुरक्षा हो जाती है। एक हिसाब से उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उसको 3-4 महीने तक उसको सुरक्षा देता है। लेकिन जब 4 महीने के पशु बच्चे हो जाते हैं तो उसको पहली बार टीका लगाया जाता है और ये भिन्न भिन्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। जैसे पीपीआर का टीकाकरण करते हैं और पॉक्स का टीकाकरण होता है, ईटी का टीकाकरण होता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब पहली बार टीका लगाते हैं 4 महीने के बाद में, तो उसमें ज्यादातर रोगों में तो बूस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है सिवाय एंटेरोटॉक्सिमिया में, बाकी उसमें एक बार टीका लगाने के बाद में वार्षिक उसको पुनर्टीकाकरण करते हैं, जो वर्ष में एक बार। पीपीआर में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पीपीआर में जो टीका होता है उसको एक बार ही लगाया जाता है, उसके बाद वो 3 साल के बाद ही अगर जरूरत पड़े तो उसको टीकाकरण करते हैं, नहीं तो वो 3 साल की आयु तक तो टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पीपीआर।
1: डॉक्टर साहब, आप बताते हो कि ये पीपीआर के जिन बीमारी है तेलना हमन हा दूसर बीमारी से अलग कैसे पहचान सकते कि ये पीपीआर बीमारी हरे की के है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। पीपीआर की जो बीमारी है वो अपने आप में उसके लक्षण इतने स्पष्ट है कि वो लक्षण से ही किसान समझ सकते हैं कि ये बीमारी पीपीआर है। इसमें तेज बुखार होता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंखों से, नाक से, मुंह से श्राव निकलता है और इसके अलावा उसमें पतले दस्त भी होते हैं
1: जी।
0: तो ये उसके मुख्य लक्षण हैं जो इसको दूसरे रोगों से अलग करते हैं और ये पता चलता है कि पीपीआर है।
1: सर, जैसे हम पीपीआर से बचाव के खातिर ऐसे बात करत हैं, तक पूरा ये भेड़ है, बकरी है, ये मन झुंड में रहते हैं, तक कोई एक पशुला हो गए,
0: हाँ हाँ,
1: हमन हा ओला पहचान भी डरन की एला हो गए है कीके, ता आगे हमन ला का करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो जो पशु में आपने पहचान लिया कि इसमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी उसको अपने रेवड़ से, झुंड से अलग कर देना चाहिए और बाकी जो पशु जो हैं उसके संपर्क में आए हैं उनको भी, उस पर भी निगरानी रखनी है, अच्छा हो तो उसको भी पृथक कर दें। और जो अलग कर दिए हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था, आवास व्यवस्था में भी उसकी अलग होनी चाहिए, उसका चार चालू कर देना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बीमार पशुओं को कभी भी झुंड में रहने ना दें उसको, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत संक्रामक रोग होता है और वो बहुत तेजी से दूसरे स्वस्थ पशुओं को भी अपने गिरफ्त में ले लेते। पीपीआर का टीका जीवन पर्यंत एक बार ही लगता है और उसकी सुरक्षा है, उसको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो नए बच्चे पैदा होंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 4 महीने के आसपास हैं तो उनको जरूर टीका लगेगा, लेकिन जो पहले हो चुके हैं जिनको टीका लग चुका है उनको लगाने की आवश्यकता।
1: सर, पीपीआर के जिन बीमारी है तेकर बाद टीकाकरण तो होते, तका ए बीमारी ले बचाव खातिर हमन कोनो घरेलू उपाय भी कर सकथन का?
0: इसके बचाव के लिए बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे ही बच्चा हुआ तो उसमें टीकाकरण हम करवा लें। इसके अलावा अगर हम कहीं बकरियों का क्रय करना है, झुंड की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पे एक सही स्रोत से हम बकरी खरीदें। और जब अगर कहीं से खरीद भी रहे हैं अगर, तो उसमें वहां से लाने के पहले कम से कम 1 महीना

0: रोक दें, ना मिलाएं, और उपचार होने के बाद को रखे रहें, अपना निर्णय को रोक के रखें कि हमको कब मिलाना। तो पीपीआर क्या है, बेहद ही गंभीर और संक्रामक रोग है, जो कि होने के बाद में ये बहुत सारे पशु बकरियों में फैल सकता है। तो इसका उपचार, उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि आपको पाँच दिन छः दिन तक लगातार देना होता है, और उसमें इसमें जो पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि डायरिया भी होता है और न्यूमोनिया भी होता है इसमें, तो उसके लिए उसको पानी की कमी पूरी करने के लिए उसमें जिसमें कि पानी चढ़ाना पड़ता है, सलाइन चढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि हमारे राज्य में पीपीआर के लिए सरकार ने अभियान चलाया हुआ है उसके उन्मूलन के लिए, और वो करीब करीब 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रहता है और टीकाकरण बराबर किया जा रहा है, तो इसकी उम्मीद कम है कि उसमें पीपीआर होगा, और आप निकट के पशु चिकित्सालय से जरूर आप संपर्क कर।
1: सर, जैसे आप मन अभी गोट करे हो कि सरकार द्वारा उन्मूलन चलाए जाते, तो एकर जानकारी किसान भाई मन कैसे पा सकते हैं कि अभी अभियान चलत है कहीं के?
0: इसके लिए जो भी संबंधित जिला रहता है उसमें वहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं, इस चीज को काफी हर स्तर पर इस चीजों की जानकारी देते हैं, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं या पंच हैं, उन तक ये बात पहुंचाते हैं। तो गांव में पहले ही मुनादी करवा दी जाती है कि जो दल है वो टीकाकरण करने के लिए आएगा, चक्रानुसार टीकाकरण किया जाता है, तो बराबर उनको जानकारी किसानों को पहुंच जाती है, बकरी पालकों को, और बकरी पालकों का पूरी सूची भी संबंधित संस्थाओं में वो संधारित करते हैं, और वो लोग मुनादी के अलावा व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क करके उनको डोर टू डोर टीकाकरण।
1: सर, एक ठन जानकारी ये चाह रही से कि अगर हम भेड़ और बकरी में ये बीमारी हो गई, तक का हम जब इलाज करवाए पर जाथन, तो सरकार भी भाग डाले, हमारा कोनो प्रकार के मदद मिल सकते?
0: बिल्कुल, अगर इस तरीके की बीमारी का कहीं भी सूचना मिलती है तो विभाग द्वारा बराबर इसमें सर्विलेंस का कार्यक्रम चलाया जाता है कि अगर इस तरह की बीमारी का की जानकारी मिल रही है तो आप पशु चिकित्सालय में संपर्क करें, पशु चिकित्सालय उनके सैंपल को लेके हमको भेजेगा और साथ में उपचार भी करेगा उसका। तो उपचार का पूरी जो प्रक्रिया है वो अपने प्रोटोकॉल के तहत वो इसमें सेवा दी जाएगी, और सैंपल लेके उसको लैब में भेजा जाता है, जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि ये जो रोग है वो पीपीआर का रोग है, जिससे कि आगामी कार्रवाई फिर विभाग द्वारा की जाती
1: है। सर, जिन टीकाकरण होते पशु मल्ल, तो यह बहुत महंगा होते कि शासन द्वारा ये निशुल्क होते?
0: ये पूरी तरीके से 100% निशुल्क है ये टीका, और बिल्कुल घर घर जाकर ये टीकाकरण की सेवा दी जाती है विभाग द्वारा।
1: डॉक्टर साहब, आप मन हमारे कार्यक्रम के पीपीआर माने भेड़ बकरी में होने वाला प्लेग रोग, कारण, लक्षण और चिकित्सा, ये विषय संबंधित समस्या के समाधान करे तेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। संगवारी हो, आज के क्रम में, आज के सलाह क्रम में अभी सुनें पीपीआर बीमारी माने भेड़ बकरी में होवैया प्लेग रोग, कारण, लक्षण और बचाव, ये विषय में बतावन रहीं डॉक्टर संजीव राय और एकर संग हमर गोट बात होत रही।
2: मनीषा, सूचना है संगवारी हो, अवैया शुक्रवार 12 जून के प्रसारित हो या हेलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हो ही फलोद्यान लगाए के तैयारी और ओखर प्रबंधन, आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। आप मन की जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर आप मन हमारे फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483, और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून के 11:30 से 12 तक करे जाए संगी हो। ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा 7:30 में करे जाए। हमला आप मन के फोन के अगोरा रही, तो ये तो रही सूचना।
1: और संगवारी हो, अब बेरहे कृषक प्रश्न मंच के, तो आप मन आज के प्रश्न लिखो। प्रश्न है, जानवर खरीदे के पहली का जिनिस के ध्यान रखन? एक सही उत्तर आप मन 7 दिन के अंदर पठो दो, ताकि आप मन के नाम ला हमन कार्यक्रम में शामिल कर पाबो। और पाछू हफ्ता आज के दिन के प्रश्न रही से, दलहनी फसल अरहर खातिर माटी के पीएच मान कतका होना चाहिए? और एक सही उत्तर है, माटी के पीएच मान 7.5-8 तक होना चाहिए और एखर ले ऊपर नहीं होना चाहिए। और सही पाती पठो या संगवारी मन के नाम है
2: कौन कौन है?
1: ग्राम कुसमी पलारी ले प्रतिमा वर्मा, तरुण आशा खुशबू और अवनी वर्मा, ग्राम चापा ले गिरेंद्र नायक, शशि निहारिका और तनिष्क नायक, अमलेश्वर ले धर्मेंद्र यादव, शिवानी पारुल यादव, और सही पाती पठोया जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। कृषक प्रश्न मंच इमेर सिरावा थे।
2: अब एक ठीक बढ़िया से गीत सुनथन भगत साहू और संगवारी मन के स्वर में।

0: भगत साहू संगवारी मन के स्वर में ये जो गीत सुनेन तेन सुन के मुंह पंछा गे मनीषा दही बासी सन है ना हाँ भाजी मीठा थे।
1: हाँ दीदी,
0: देखब जाए के बेरा हुआ थे तो संगवारी मन बता देथन काली के कार्यक्रम ले मनीषा बता काली के कार्यक्रम।
1: हाँ दीदी, और काली संझा है ना कार्यक्रम में हमन हा आज के सलाहक्रम में सुनबो डॉक्टर वंदना भगत और विषय हो ही सतत पशु आहार हेतु हाइड्रोफोनिक चारा उत्पादन तकनीक और संग में दीदी कृषक प्रश्न मंच और सुघर गीत संगीत तो हो बेच कर ही तो संगवारी हो देवा विदा आप जम्मू सन ला मनीषा
0: और विनीता के राम राम, राम।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र 8 बजे ही लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। साया इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ सईद कादरी के बोल अनु मलिक का संगीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है संभावनाएं।

0: अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गरीब का गीत, आवाजी संजीवनी और कुमार सानू की। राहत इंदौरी के बोल हैं अनु मलिक का संगीत।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पीटी उल्लास कुमार। पहले सुनिए ये भजन, रचना ब्रह्मानंद की है।

सुगम संगीत अभी आप सुन रही थी। कलाकार थे पीटी उल्लास कुमार। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:30 होने को है। अगला कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

0: हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। देहरादून में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में सरबजीत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती और ग्लोबल शतरंज महोत्सव आज से मुंबई में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज का दिन खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया, जबकि तन्वी शर्मा भी उलटफेर करने में सफल रही। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु, तन्वी, मालविका बंसोड़, ईशा रानी बरुआ और तान्या हेमंत सभी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में एक तरफा मुकाबले में पेरू की इनेस लूसिया कास्टिलो सालाजार को सीधे गेम में सिर्फ 32 मिनट में 21-13, 21-11 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ से होगा, जिन्होंने 1 घंटा 3 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में चीन की हान कियान को 22-20, 10-21, 21-14 से शिकस्त दी। दिन का सबसे बड़ा उलटफेर 17 साल की तन्वी ने किया, जिन्होंने 5वीं वरीय और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को 45 मिनट में 21-12, 22-20 से शिकस्त दी। तन्वी अगले दौर में मालविका से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड की तोरुंग सिहिंग को 15-21, 21-7, 21-13 से हराया। तान्या ने अमेरिका की ऐशिका जायसवाल को 39 मिनट में 21-17, 21-18 से हराया। तान्या का मुकाबला पूर्णपावी चोचुवोंग से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लिन जडेन और विक्टोरिया जोनाडी को 27 मिनट में 21-13, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। किरण जॉर्ज, तरुण मनिपल्ली और क्वालिफायर सनित दयानंद पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात निशानेबाजी की। देहरादून में राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल इवेंट आयोजित किए गए। सरबजोत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल शूटिंग रेंज में कल राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल हुए, जिनमें पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह, आर्मी शूटर लक्षिता, पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अखिल शिवराण और महाराष्ट्र के साक्षी सुनील पाडेकर अपने अपने इवेंट्स में विजेता बने। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सरबजोत ने 245.9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। आर्मी के शूटर अजेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में 245.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 221.5 के स्कोर के साथ टॉप 3 में शामिल है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में आर्मी शूटर लक्षिता ने हरियाणा की सुरभि राव को सिर्फ 0.2 पॉइंट के अंतर से हराया। लक्षिता ने 240 का स्कोर किया, जबकि सुरभि ने 239.8 का स्कोर हासिल किया। उत्तर प्रदेश की मानसी आनंद ने 220.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। ISSF म्यूनिक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि और पलक ने क्वालिफाई करने के बावजूद फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के अखिल शिवराण ने नेवी के नीरज कुमार को सिर्फ 0.2 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया। अखिल का स्कोर 358.3 रहा, जबकि नीरज 358.1 पर रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 345.4 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पडेकर ने 358.2 के स्कोर के साथ पहला, वहीं कर्नाटक की तिलोत्मा सेन ने 357.2 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की आशी चौकसे ने 345.5 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात फुटबॉल की। 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया का सबसे

0: पहली बार इस विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। सुनते हैं फीफा विश्व कप पर एक खास रिपोर्ट।
1: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट न केवल फुटबॉल का उत्सव होगा बल्कि खेल के इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक साबित होगा। दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें एक बार फिर उन सितारों पर होंगी जो अपने देशों को विश्व विजेता बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगा, जबकि फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार हैं। सबकी निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर होंगी, जिनके लिए ये विश्व कप अंतिम साबित हो सकता है। 2022 में कतर में विश्व कप जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाले मेसी एक बार फिर इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम, ब्राजील के विनीसियस जूनियर, स्पेन के युवा सनसनी लामिन यमाल और पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस भी इस विश्व कप के प्रमुख आकर्षण होंगे। अगर टीमों की बात करें तो अर्जेंटीना अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। फ्रांस के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन है, जबकि ब्राजील हमेशा की तरह अपनी आक्रामक शैली और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण खिताब की दौड़ में है। हालांकि विश्व कप केवल दिग्गज टीमों का मंच नहीं होता, हर बार कोई ना कोई बड़ी टीम, कोई ना कोई नई टीम उलटफेर कर इतिहास रचती है। इस बार मोरक्को, जापान, सेनेगल और उरुग्वे जैसी टीमें डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। मोरक्को ने 2022 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था और इस बार भी उसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले ही रोमांच से भरे होने वाले हैं। मेजबान देशों पर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन का दबाव होगा, जबकि बड़ी टीमें शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहेंगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता इसका नया प्रारूप है। 48 टीमों की भागीदारी से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही देशों और नए सितारों के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान श्याम थापा ने कहा कि फुटबॉल विश्व कप की लोकप्रियता पूरे विश्व में है।
2: फुटबॉल इज मोस्ट लविंग गेम सारा विश्व में। आप सारा दुनिया अभी देखने में मस्त हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है। और ये आपसे नहीं, बहुत तो वर्षों से ये जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग के टाइम आगे से फुटबॉल में लिया जाता था, लेकिन ऐसे नाम अभी हम लोग जो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे ऐसे कलाकार फुटबॉल में, उनको कौन भूल सकता है। मेरे को लगता है फुटबॉल जैसा क्रेज सारा विश्व में और कोई दूसरा गेम में नहीं है।
1: अगले कई सप्ताह पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंगी होगी। कहीं मेसी की आखिरी विश्व कप की कहानी लिखी जाएगी, कहीं एम्बाप्पे जैसे युवा सितारे अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं अनजान खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि सपनों, जुनून, गौरव और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
0: शतरंज की मुंबई में 360 ग्लोबल शतरंज महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 18 जून तक खेली जाएगी, जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता एस किशोर की एक रिपोर्ट।
3: 58 लीडिंग चेस प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग 16 कंट्रीज, अमंग दम 14 ग्रैंड मास्टर्स, 34 इंटरनेशनल मास्टर्स, 6 फिडे मास्टर्स, 2 वेमेन इंटरनेशनल मास्टर्स एंड 2 कैंडिडेट मास्टर्स कंप्राइज द स्टार स्टडेड फील्ड दैट विल फीचर इन द मास्टर्स सेक्शन कैटेगरी ए ऑफ द 361 मास्टर्स चेस टूर्नामेंट विच गॉट अंडर वे एट द एक्सपो हॉल एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई टूडे। The Masters section is the flagship event of the Rs 60 lakhs prize money 361 Global Chess Festival organized by the Indian Chess School and brings together some of the strongest players from India and around the world with an average rating of 2,359.

0: Conducted in a classical format of 9-round Swiss League, the tournament provides an ideal platform for players to compete for rating points.
1: और अब बात महिला विश्व कप की. महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. पिछले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब अपने पहले T20 विश्व कप खिताब पर होगी. भारतीय महिला क्रिकेट में जब भी बड़े मैचों और बड़े मौकों की बात होती है तो एक नाम लगातार चर्चा में रहता है, जेमिमा रॉड्रिक्स. एक दिवसीय विश्व कप की तरह ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को इस T20 विश्व कप में भी जेमिमा से उम्मीदें होंगी.
2: हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली जेमिमा रॉड्रिक्स ने दबाव भरे मुकाबलों में खुद को भारत की मध्यम क्रम की रीढ़ के रूप में स्थापित किया है. उनके करियर का सबसे यादगार अध्याय ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक पारी रही. उस मैच में भारत ने 339 रन का लक्ष्य हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था. जेमिमा ने नाबाद 127 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली और भारत की अब तक की सबसे बड़ी रन चेज की नींव रखी. इस पारी में उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया बल्कि दबाव में मानसिक मजबूती का भी शानदार उदाहरण पेश किया.
3: I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and he fought for me.
2: इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मंचों पर उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है. 2022 महिला विश्व कप में भले ही भारत खिताब तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उस दौर से जेमिमा के खेल में निरंतरता और परिपक्वता दिखने लगी थी. उसी दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उपयोगी पारियां खेलकर ये संकेत दे दिया था कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी बन सकती हैं. हाल के वर्षों में उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास में लगातार सुधार देखने को मिला है. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उन्होंने कई बार मध्य क्रम में आकर पारी को संभाला और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाए. 2025 के विश्व कप अभियान में उनका योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने दबाव में टीम को स्थिरता देने का काम भी किया. अब जब भारत आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की तैयारी कर रहा है, टीम की उम्मीदें एक बार फिर जेमिमा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी है. हाल ही में उन्होंने भी माना है कि पिछले एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है और अब भारतीय टीम हर बड़े मुकाबले में जीत का दावा करने की मानसिकता के साथ उतर रही है.
3: I think what happened about winning that World Cup is everyone was a part of it. Everyone knows what pressure is like. But at the same time, everyone knows that, okay, we have crossed the line once. We can do it again. And that rubs off, that belief. You know, a lot of times we visualized it so much, but now we've lived it. So it helps us believe even more that we can do it again.
1: और अब बात तीरंदाजी की. हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा. और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ. आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप email ID sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया. कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी. सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के

0: अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए

0: ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,800

0: इस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 ke pehle ke kai dashak bahut asthirta aur uthal puthal se bhare hue the. Iska desh ko bahut nuksan bhi uthana pada. Lekin ab desh ki janta ek sthir sarkar ka kaam bhi dekh rahi hai. और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है. और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.
1: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest-serving elected Prime Minister Narendra Modi.
3: It is a historic tribute to India's longest-serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time, at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind.
1: The meeting also focused on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister in consecutive terms. With 4,399 days of continuous service as an elected Prime Minister, Mr. Modi has surpassed the previous record held by former Prime Minister Jawaharlal Nehru, who served for 4,398 continuous days. Meanwhile, the Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometres with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometres, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport.
4: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए.
5: थ्री डिसीजन वर टेकन इन टुडेज कैबिनेट मीटिंग. वन डिसीजन कंसर्न्स द एक्सपेंशन ऑफ द अहमदाबाद मेट्रो, व्हाइल अदर टू रिलेट टू अमरावती, द न्यू कैपिटल सिटी बीइंग डेवलप्ड इन आंध्र प्रदेश. द कैबिनेट अप्रूव्ड द अहमदाबाद मेट्रो फेस टू ए कॉरिडोर फ्रॉम कोटेश्वर रोड टू द एयरपोर्ट इन अमरावती. सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी ब्रॉट टुगेदर इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स. टू प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस, अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स.
4: तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है.
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme, with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fiber, MMF apparel, MMF fabrics and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards empowerment of the youth.
6: In the past 12 years, the government has given focus to the youth power of the nation. India's next generation reforms have now turned into a reform express with youth power at its core. Young Indians are central to building a developed India and shaping the country's future across sectors. More than 12 crore new entrepreneurs have received PM Mudra Yojana loans, giving wings to the dreams of youth. The government is empowering youth to drive employment and self-reliance, and youth becoming job creators, not job seekers. A female entrepreneur from Raipur in Chhattisgarh, Isha Patel, shared her inspiring journey from cooking at home to establishing a successful cafe business.
7: Many young people feel that they lack funding, but often they are not aware of the various government schemes available to support them. My suggestion would be to do some research on these opportunities. For example, there are schemes like Mudra Mudra loan and the PM EGP loan, along with several other loans that are available without requiring collateral.
8: Business kariyo aur jitna chahe utna grow kar sakte hain.
6: More than 60 lakh youth have been benefited under the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana. Over 1.6 crore youth have been

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: मोहम्मद रफी की आवाज में आइए अब सुनते हैं कन्यादान। इस फिल्म का ये गीत, संगीत शंकर जयकिशन का।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीति पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ विशेष साक्षात्कार।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीति पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ विशेष साक्षात्कार। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं जिद्दी इस फिल्म का गीत आवाज लता मंगेशकर की, बोल प्रेम धवन की।

बहु इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त और तलत महमूद की आवाजों में। एस एच बिहारी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, मजरू के बोल थे खयाम का संगीत। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में जान निसार अख्तर का लिखा गीत, संगीत ओपी नैयर का है, फिल्म का नाम है बाप रे बाप।

0: Prova.
1: फिल्म बाप रे बाप का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में आप आपको सुनवा रहे हैं बॉम्बे बाई नाइट, इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मल्हार। इस फिल्म का गीत आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की, रोशन का संगीत है, गीतकार है इंदिवर।

आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, शंकर जयकिशन का संगीत था, गीतकार थे शैलेंद्र। आमने सामने इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ें एक बार फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गीतकार आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुलोचना बृहस्पति का गाया राग कौसी कानड़ा में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में निपत है। बोल है नहीं पहचान भई काहू सो। और द्रुत रचना 3 ताल में निपत है। बोल है मुरली की तान विष की भरी। तबले पर संगत की है संपत लाल ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुलोचना बृहस्पति का गाया राग कौसी कानड़ा में ख्याल, तबले पर संगीत की संपत लाल ने। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 11 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई

0: पेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress.

टॉक स्टूडियो से समय मिला लीजिए 5:23:36:37:38 वर्क स्टेशन 1 वर्क स्टेशन 2 8 साइड से समय देखते हैं।